सुप्रभात श्रोताओं, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम पर 909 किलोहर्ट्स, एफएम पर 100.1 मेगाहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026 ईस्वी। सुबह के 5:56 होने वाले हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा मंगल ध्वनि के साथ आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई

0: तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉ जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंघम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat yesterday. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnav and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi said that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमी कंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: The Prime Minister also said the Sanand

वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज संजीव कालिया का नमस्कार। श्रोताओं, भोर की सुनहरी बेला में जब प्रकृति अपनी निस्तब्धता से जागकर नवजीवन का स्वागत करती है, तब मन भी किसी अदृश्य आलोक की ओर आकर्षित होने लगता है। संसार का प्रत्येक दिन नई चुनौतियां लेकर आता है, किंतु जो हृदय श्रद्धा, विश्वास और आत्मचिंतन से जुड़ा रहता है, उसके लिए कठिन से कठिन मार्ग भी सुगम प्रतीत होने लगता है।

है। श्रोताओं, भक्ति अपने भीतर की अशांति को शांति में, अहंकार को विनम्रता में और भटकाव को दिशा में बदलने की एक साधना है। जब मन ईश्वर के नाम से जुड़ता है, तब बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, भीतर आशा का दीपक जलता रहता है। यही दीपक जीवन को अर्थ देता है और मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है। तो आइए इसी मंगल भावना के साथ आज के वंदना कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता मंगलमूर्ति श्री गणेश जी की वंदना सुनते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नम कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। जहाँ शुभ संकल्प जन्म लेते हैं, वहाँ प्रथम स्मरण गणपति का होता है। आरंभ की सफलता केवल बाहरी तैयारी से नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन से भी जुड़ी होती है। श्रद्धा जब विवेक के साथ चलती है, तब हर कदम में स्थिरता का संचार होता है।

और श्रोताओं, अब मर्यादा, करुणा और धर्म की प्रतीक भगवान श्री राम का स्मरण करें। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्रोताओं, श्री राम का चरित्र समय की सीमाओं में बंधा हुआ इतिहास नहीं है, बल्कि मानव चेतना की एक सतत धारा है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन संयम, वचन की प्रतिष्ठा और संबंधों की गरिमा कभी पुरानी नहीं होती है। और यही कारण है कि राम का नाम केवल होठों पर नहीं, करोड़ों लोगों की धड़कनों में बसता है।

और श्रोताओं अब स्मरण करते हैं अटूट श्रद्धा, अदम्य साहस और निष्काम सेवा के पर्याय हनुमान जी का। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृषाणुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। जिस मन में समर्पण होता है वहां भय अधिक देर तक टिक नहीं पाता है। निष्ठा और विश्वास ऐसी शक्तियां हैं जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा देती हैं। हनुमान जी की आराधना आत्मबल और विनम्रता का अद्भुत संगम है। लीजिए सुनिए।

और श्रोताओ, अब बांसुरी की मधुर तान के साथ स्मरण करते हैं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का। जीवन कभी केवल युद्ध भूमि नहीं होता और न ही कभी केवल उत्सव होता है। दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की कला ही सच्ची परिपक्वता है। मुस्कान के साथ उत्तरदायित्व निभाना, कर्म करते हुए भी मन को निर्मल बनाए रखना, यही जीवन का मधुर संगीत है।

और श्रोताओ, अब जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के श्री चरणों में प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्से नमस्तस्से नमस्तस्से नमो नमः। जब मनुष्य के भीतर विश्वास जागृत होता है, तभी उसकी सुप्त शक्तियां भी जाग उठती हैं। अंधकार चाहे कितना ही गहरा क्यों न हो, एक दीपक उसे चुनौती देने के लिए पर्याप्त होता है। यही संदेश शक्ति की उपासना का भी है। आशा को जीवित रखना और सत्य के पक्ष में अड़िग बने रहना।

श्रोताओं, इसी मंगल भावना के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की कृपा आप सभी के जीवन में शांति, सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंद का संचार करे। प्रभु के आशीर्वाद से आपके घर आंगन में सदा सुख, सौहार्द और शुभता बनी रहे। इसी के साथ आज के वंदना कार्यक्रम से संजीव कालिया को अनुमति दें। नमस्कार।

0: श्रोता अभी आप भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए आज का चिंतन। विषय है अडोल मन। वाचक स्वर प्रेम सिंह गोदारा का है।
1: मन को अडोल करने के लिए लंबे समय से अनेक आलंबनों का सहारा लिया जाता रहा है, जैसे किसी मूर्ति का ध्यान करके, किसी मंत्र या नाम को जप करके, किसी रंग रूप आकृति का ध्यान करके, ऐजपा जाप, खेचरी मुद्रा, अनहदनाद, ज्योतिर्मय स्वरूप विधियों का ध्यान करके। लेकिन अपनी सांस, अपने मन को शुद्ध रूप में अडोल करने का सबसे अच्छा आलंबन है, क्योंकि सांस क्षण प्रतिक्षण हमारे साथ है। मन को अडोल करने के लिए वर्तमान में रहना बहुत ही जरूरी है, और सांस से ज़्यादा वर्तमान और कुछ नहीं है। हमारा सांस हमें बाहर से भीतर अपने मन की तलसपरसी गहराइयों तक ले जाने के लिए एक पुल का काम करता है। सांस का हमारे शरीर के साथ बहुत गहरा संबंध है। जब भी कोई अच्छी बुरी मनचाही अनचाही बात होती है तो सांस अपनी स्वाभाविक गति खो देता है, थोड़ा तेज या धीमा सा हो जाता है। लेकिन अपने मन को जो क्षण प्रतिक्षण या तो भूतकाल में जीना चाहता है या भविष्य काल में जीना चाहता है, उसे अपने सांस के सहारे हमें किस प्रकार वर्तमान में स्थित करना है, इसके लिए प्रतिदिन सूर्योदय से आधा घंटा पहले से लेकर के सूर्योदय से आधा घंटा बाद तक, यानी एक घंटे रोजाना एक ही स्थान पर अपने शरीर को

0: जरा सा भी हिलाए डुलाए बिना, कमर को सीधा रखें, गर्दन व चेहरे को शून्य मुद्रा यानी रिलैक्स रखते हुए बैठे रहें। किसी भी अंग में तनाव या खिंचाव न रखें। इन सभी बातों को जांचने के बाद अपना सारा का सारा ध्यान अपनी सांस के आवागमन पर लगाए रखें। जैसे ही सांस अंदर जाए तो यह साफ साफ मालूम पड़ता रहे कि इस क्षण की यही सच्चाई है कि मेरी सांस भीतर जा रही है। अंदर जाती जाती सांस थोड़ी धीमी होकर के क्षण भर के लिए भीतर रुकेगी, और जब सांस भीतर रुकी हुई हो तो हमें पूरा बोध होना चाहिए कि इस समय मेरी सांस भीतर रुकी हुई है। इसी प्रकार जैसे सांस बाहर की तरफ आने लगे तो इसकी भी हमें क्षण प्रतिक्षण जानकारी बनी रहनी चाहिए। भीतर की तरह बाहर भी सांस क्षण भर के लिए रुकेगी। जब सांस बाहर रुकी हुई हो तो हमें स्पष्ट ज्ञान हो कि सांस बाहर के मोड़ पर रुकी हुई है। भीतर बाहर सांस के दोनों मोड़ पर बड़ी सूक्ष्मता के साथ ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार अपने ही सांस की क्षण प्रतिक्षण पहरेदारी होती रहे, प्रत्येक सांस की साफ साफ एवं लगातार जानकारी बनी रहे। इस तरह के अभ्यास से हमारा मन तीक्ष्ण होता जाएगा, एकाग्र होता जाएगा। हमें जानबूझ करके अपने मन में कोई विचार नहीं लाना है। अगर अपने आप कोई विचार आ जाए तो उसका साथ नहीं देना है। हमें अपना ध्यान सांस के आवागमन पर ही लगाए रखना है। यह मन जंगली है, इसे पालतू बनाना है, अपने वश में करना है तो हमें बड़े ही धीरज का परिचय देना होगा। जरा सा भी उतावलापन नहीं आने पाए। यहां पर एक बात बड़े ही ध्यान देने की है, यह कामना करना कि मेरा मन टिक जाए, इधर उधर ना भटके, ऐसी कामना ही अपने आप में बहुत बड़ी बाधा है। गीता में लिखा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। अर्थात अपना सारा का सारा ध्यान काम करने के ढंग पर लगाए रखें, परिणाम कुदरत और प्रकृति पर छोड़ दें। ध्यान में सहजता हो, इच्छा है वो बाधा है। जैसे कोई आदमी किसी का नाम भूल जाए, कोशिश करने पर भी नहीं आता, उसे छोड़ दे तो वह नाम अपने आप याद आ जाता है। जो क्षण बीत गया वो दुनिया की सारी संपदा दे करके भी हम वापिस नहीं पा सकते, और जो क्षण आने वाला है, जो कैसा होगा हमें जिसका पता नहीं है, वो जब तक वर्तमान नहीं बन जाता हम उसमें कैसे जिएंगे। जीना तो हमें वर्तमान में है, लेकिन हम एक ऐसा मन लिए हुए चल रहे हैं जो क्षण प्रतिक्षण या तो भूतकाल में जीना चाहता है या फिर भविष्य काल में जीना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जीवन जीना नहीं आया, हमें जीवन जीने की कला नहीं आई। साधना ध्यान हमें जीवन जीने की कला भी सिखाता है, हमें अपने मन का मालिक भी बनाता है, सही अर्थों में गुलामी से मुक्ति दिलाता है। दुनिया में सब कुछ पा लेने का भी कोई सार नहीं यदि स्वयं को नहीं पाया, स्वयं के मालिक नहीं बने। दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से खुद की मुलाकात कर ली, मिला के उसकी तार से बेतार को, पैदा उससे मिलने की हालात कर ली।
1: श्रोताओ, अभी आपने आध्यात्मिक दर्शन का कार्यक्रम चिंतन सुना। विषय था अडोल मन, वाचक स्वर प्रेम सिंह गोदारा का था। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का कोटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए अब सुनिए हमारे चैनल से आज प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद सवेरे 7:10 पर खेतीहाना वास्ते कार्यक्रम में तरक्की पसंद काश्तकार भाइयों के लिए उपयोगी जानकारी का विषय रहेगा, पॉलीथीन पशुओं के लिए घातक। मानस गाना आप सुनेंगे सवेरे 7:20 पर। आज आप सुनेंगे भाग 295 का पाठ। सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुप्रभात होगा सवेरे 7:30 पर। समाचार प्रभात प्रातः 8 बजे, मॉर्निंग न्यूज प्रातः 8:15 पर और खबरनामा सुबह 8:30 पर।

0: सभी समाचार बुलेटिन हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत कार्यक्रम में प्रातः 8:45 पर आप कुछ भक्ति रचनाएं सुनेंगे और प्रादेशिक समाचार हिंदी में आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित होंगे प्रातः 9:00। मरुमंगल कार्यक्रम में भारती सोनी कलाकार रहेंगे प्रातः 9:10 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए सवेरे 9:30 पर। श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुनेंगे प्रातः 10:00। फिल्म संगीत होगा प्रातः 11:00। कुछ बातें कुछ गीत ये कार्यक्रम होगा दिन में 12:05 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में गजलों का आनंद लीजिए दिन में 12:30 पर। खेत खलिहान कार्यक्रम में पशुओं के लिए संतुलित आहार विषय पर जानकारी होगी दिन में 12:50 पर। महिला जगत कार्यक्रम होगा दिन में 1:05 पर। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी सुनीता शर्मा। चर्चा के विषय रहेंगे वन है तभी जीवन है, आयुष्मान भारत योजना, मोबाइल चार्जिंग के समय रखें सावधानी और चॉकलेट से बनी हेल्दी डिशेस के बारे में भी बताया जाएगा। फिल्म संगीत सुनिए दोपहर बाद 2:30 पर। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाते हैं दोपहर बाद 3:00 से। नौजवान साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी संध्या 5:00 और आज संध्या 7:00 से लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम लंदन में आयोजित होने वाले ICC T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले फाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण किया जाएगा। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। थोड़ी ही देर में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकण्डक्टर संयन्त्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रान्तेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकण्डक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000+ यावत् भारते 5 सेमीकण्डक्टर संयन्त्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीयचरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा

0: प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण एकविंशतितमायाः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जासङ्कटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचितनिर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः चतुःपञ्चाशत्सहस्र युवभ्यः नियुक्तिपत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः सानन्दक्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट् इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयन्त्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक सञ्जालीयतन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकासयात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य दशदिनाङ्कं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानाम् आधिकारिकयात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्षनेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीयसम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीनसत्रमस्य मासस्य विंशतिदिनाङ्कादगस्तमासस्य त्रयोदशदिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीयकार्यमन्त्री किरण रिजिजु सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलै मासस्य विंशतिदिनाङ्कात् संसदः वर्षाकालीनसत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशतिः विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् अद्य अन्त्यद्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलं सम्मुखीकरिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ अष्टवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र की में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी

संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: engineers and technical experts, flagged off fuel tankers, and virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 2. The monsoon session of Parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th of July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till the 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. After his visit to Oman, Dr. Jaishankar will visit New York on the 13th of July to launch India's official campaign for the UN Security Council tenure 2028-29. He will then attend the third India-EU Trade and Technology Council meeting and interact with his European Union and Belgian counterparts in Brussels on 14th and 15th July. The pilgrims from Jammu and Kashmir who participated in the Somnath Swabhiman Yatra 2026 under the theme Ek Bharat Shreshth Bharat returned to Jammu Tawi Railway Station, marking the successful conclusion of the six-day pilgrimage to Gujarat. The Yatra, organized by the Department of Culture, Government of J&K, in collaboration with J&K Academy of Art, Culture and Languages, enabled the pilgrims to visit the Sri Somnath Mahadev Temple and several other religious, historical and cultural sites across Gujarat. In FIFA World Cup, Morocco stormed into the quarterfinals with a commanding 3-0 victory over Canada in Houston, Texas today. Defending champions Argentina also progressed to the round of 16 after defeating Cabo Verde 3-2 following extra time in a thrilling round of 32 encounter. Argentina will next face Egypt, who advanced after beating Australia 4-2 in a penalty shootout following a 1-1 draw after regulation time and extra time. In the final round of 32 match played yesterday at Kansas City Stadium, Colombia edged past Ghana 1-0 to secure a place in the round of 16. Colombia will now face Switzerland for a spot in the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:10 हो चुके हैं। खेतिहर वास्ते कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान भाइयों के लिए आज उपयोगी जानकारी का विषय है पॉलीथीन पशुओं के लिए घातक। लीजिए सुनिए।
2: किसान भाइयों, सूर्य भाई का राम राम। अपनो देश है जो कृषि प्रधान देश है और कृषि के सागे सागे भाई लोग जका सहायक धंधा या छोटा मोटा काम धाम है जका करे और विशेष तौर कृषि से जुड़ेड़ा काम धाम है जका भाई लोग ज्यादा करे और कृषि से जुड़ेड़ो काम धाम जिया पशुपालन को काम धाम है वो भी भाई लोग जका खेती पाती के सागे सागे करे। कई किसान भाइयों की तो पशुपालन से ही रोजी रोटी जकी चल है। पर किसान भाइयों, आप देखा कि रोजमर्रा की अधिकांश खाद्य पदार्थ शाक सब्जी जैसा तमाम चीजा जकी आप बाजार से लिया तो बिन टाइम आप पोलीथीन की थैली में लाने ले जाने को काम है जो करा और वो प्रचलन विज्ञान युग में की ज्यादा ही बढ़ी। एर प्लास्टिक या पॉलीथीन पशुओं के पेट या आंत में जागे अवरोध पैदा कर देवे। किसान भाइयों, पेट एर आंतांगो कोई भी सत्राव आप वस्तुओं ने गला या पचा कोनिस के इनके कारण पशुओं में बंद पड़ जाए, कई रोग जका उत्पन्न हो जाए। पशुओं के शरीर में जागे आहार नाल में खाद्य पदार्थ की पाचन क्रिया जकी बिगड़ जाए, धीरे धीरे खाद्य पदार्थ सड़गे और गैस बनान लाग जाए, जके शु पशुओं में आफरो आन लाग जाए। और आहिस्ता आहिस्ता पशु खानो पीणो जको छोड़ दे और खाने पीने में ए रुचि जकी पैदा होन लाग जाए। आखिर में खानो पीणो बंद हो जाए तो लगातार आफरो रहने शु पशुओं को दम है जो घुटन लाग जाए, जैसे शू आखिर में पशु की मौत हो जाए। किसान भाइयों, शल्य चिकित्सा शू पशुओं को इलाज संभव है, परंतु शल्य चिकित्सा की पेचीदगी खर्चीली है। गरीब पशु पालक खातर बा बिंगे पशु भी बार हुआ है। गांव शू पशु ने चिकित्सालय ले जानो और लियानो घणो खर्चीलो हुआ है। पर पॉलीथीन थैलियां के प्रचलन शू पालतू पशुओं के अलावा आवारा पशु है और वन्य जीव है वे भी इंगी मार शू बच को नहीं पा रहे। किसान भाइयों, पशुओं ने पॉलीथीन खाने से आप क्या बचा उसका इनके वास्ते एक तो आपने बचाव करना पड़ सी। भाई लोग जब बाजार जावे तो भाई कपड़े को थैलो ले के जावे तो

जकेशियों सौदो सब जो को लेना चाहिए। पॉलीथीन कम से कम है जो कि आपने घर में लेनी चाहिए, जे आप ले भी आओ तो पॉलीथीन ने इकट्ठी करके कबाड़ी ने भेज देनी चाहिए। इंग साग साग चूल्हो है, तंदूर है, हारो है, वो भी आपने जगावा। बिंग जगाना में पॉलीथीन बड़ी सहायक हो, तो बिन टाइम आपने इन्हें काम में ले लेना चाहिए। पॉलीथीन में सब्जियां को कचरो, रोटी को टुकड़ो, चिकनाई भी पॉलीथीन में लाग जाए, जके शू आपा बिना गली में फेंक दें या अकूरड़ी पर फेंक दें तो बिना पशु जका खा लेवे। और कई बार तो आप भी देखा कि आपा जद भी घर गो या आंगन गो कचरो बुहार गए या बिना पॉलीथीन की थैली में बंद करके आपा गली में फेंक दें, अकूरड़ी में फेंक दें, तो वह भी जद बिन पशु खावे तो वो बहुत ही हानिकारक हो। यार कदे कदे आप भी देखा कि टाबर जका प्लास्टिक या रबड़ की बाल शू खेलता रहे आंगन में बाखड़ में, तो बाँसू खेलता खेलता कई बार बाल जकी पशुआ करने चली जाए तो भी मैं पशु खा लेवे। तो इसी स्थिति में टावरा ने भी अपने समझाना चाहिए। कई बार देखा के पॉलीथीन के मापा घर आंगन को कचरो बुहार गए तो भी मैं देखा के कचरे के साग साग कील है, आलपिन है, ए भी बिंग माँ चली जाए बापा वो बाहर फेंक दें तो पशु भी ने भी खा लेवे, तो पशुओं वास्ते कील है, आलपिन है, बड़ी नुकसानदायक हो है। इंगे सागे सागे आपने और भी कई सावधानियां जकी राखनी पड़े। जहाँ पॉलीथीन में आपा कचरो गाल गेर अकूरड़ी पर घेर दिया, जब आपा गोबर की खाद खेत में गिरांगा तो वह पॉलीथीन जमीन की उर्वरता ने भी नष्ट कर देगी। पशुओं ने टाइम टाइम पर कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। दाना में प्रचुर खनिज मिश्रण देने से पशुओं में पॉलीथीन खाने में अरुचि पैदा हो जाएगी। चारे दाने के अलावा टाइम टाइम पर पशुओं के मुंह पर आपने छिंको जको लगाना चाहिए, वो भी आपने लाभदायक है। इन तरीके से आप पॉलीथीन से पशुओं ने बचा सका तो जितो भी हो सके आपने पॉलीथीन से पशुओं ने बचाना चाहिए। और अब हूँ खेतकानी चालू, राम राम सा राम राम।

श्रोताओ, ये है आकाशवाणी का कोटन सिटी चैनल सूरतगढ़। सवेरे के 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए मानस गान। आज आप सुनेंगे भाग 295 का पाठ।

हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई विभीषण हूं। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरी काया तामसी है। स्वभाव से ही मैं पापी हूं। कानों से आपका सुयश सुनकर आपकी शरण आया हूं। मेरी रक्षा कीजिए। विभीषण ये वचन कहकर श्रीराम के चरणों में दंडवत आ गिरे। हर्षित होकर श्रीराम उन्हें गले से लगा लेते हैं। कहते हैं, हे लंकेश, परिवार सहित अपना कुशल क्षेम सुनाइए। दिन रात दुष्टों के बीच आपका निवास है। आप अपना धर्म भला किस प्रकार निभाते हैं? मैं जानता हूं कि आप नीति कुशल हैं। अनीति से आपका कोई संबंध नहीं। विभीषण निवेदन करते हैं, हे प्रभु, नरक में रहना श्रेयस्कर है, किंतु विधाता किसी को दुष्टों की संगति न दे। लोभ, मोह, मद और अभिमान तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक श्री रघुनाथ का वहां निवास नहीं होता। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने उन चरणों में शरण प्राप्त कर ली जिनकी पूजा

पूजा स्वयं ब्रह्मा तथा शिव करते हैं। श्री राम ने विभीषण को अपनी भक्त वत्सलता से आश्वस्त कर दिया। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण का जीवन धन्य हो गया।

श्रोताओं, अभी आपने मानस गान सुना। आज आप सुन रहे थे भाग 295 का पाठ। स्वर दिया था सुरेश वाडकर और श्रीकांत पारगांवकर ने। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 7:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात।

श्रोताओं, अभी आपने बाबू फिल्म का खूबसूरत नगमा सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी और संगीत दिया राजेश रोशन ने। श्रोताओं, जिंदगी में हर इंसान कामयाबी की मंजिल पाना चाहता है। कोई शोहरत चाहता है, कोई दौलत चाहता है, तो कोई इल्म और इज्जत की बुलंदियों तक पहुंचना चाहता है। लेकिन सफलता किसी इत्तफाक का नाम नहीं है, बल्कि लगातार मेहनत, मजबूत इरादों और अच्छे किरदार का नतीजा होती है। कहते हैं कि ख्वाब वो नहीं है जो नींद में आए, ख्वाब वो हैं जो आपको सोने ना दें। कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने मकसद को पहचानते हैं और हर मुश्किल के बावजूद उससे नजरें नहीं हटाते हैं। श्रोताओं, कामयाबी का, सफलता का पहला मूल मंत्र है स्पष्ट लक्ष्य। जिस इंसान को

वो अपनी मंजिल का पता होता है, उसके लिए रास्ते भी आसान होते चले जाते हैं। और बिना लक्ष्य के, बिना टारगेट के, मेहनत वैसी ही है जैसे बिना पतवार की नाव। और दूसरा मंत्र है कामयाबी का अनुशासन। वक्त की कद्र करने वाला इंसान ही वक्त के साथ आगे बढ़ता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा किया गया ईमानदार प्रयास एक दिन बड़ी सफलता की बुनियाद बन जाता है। और तीसरा मंत्र कामयाबी का है लगन और सब्र। हर कामयाबी रातों रात नहीं मिलती है श्रोताओं, कभी कभी मंजिल तक पहुंचने से पहले कई नाकामियां मिलती हैं, मगर वही नाकामियां इंसान को मजबूत बनाती हैं। एक मशहूर शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। इसका मतलब यही है कि इंसान को कोशिश का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। और सफलता का चौथा मूल मंत्र है सकारात्मक सोच। हालात, परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उम्मीद का दामन थामे रखने वाला इंसान एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। शिकायतों से रास्ते नहीं बनते, बल्कि हौसलों से तकदीर बदलती है। हम अपने युवा विद्यार्थियों से गुजारिश करेंगे कि आज प्रतिस्पर्धा का दौर है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सोशल मीडिया की चकाचौंध, बुरी संगत और नशे जैसी बुराइयां कुछ पल का आकर्षण तो दे सकती हैं, लेकिन उम्र भर का अफसोस भी बन सकती हैं। अपने वक्त का, अपनी ऊर्जा का, अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल कीजिए। अच्छी किताबें, अच्छे दोस्त और अच्छे संस्कार आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखिए कि सफलता केवल ऊंचे पद या अधिक धन का नाम नहीं है। सफलता वह है जिसमें इंसान अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाए, समाज के लिए उपयोगी बने और अपने चरित्र की रोशनी से दूसरों का जीवन भी आलोकित करे। और श्रोताओं, बातें और भी करेंगे, पहले सुनते हैं गीत।

शो तो अभी अपनी एक फूल दो माली फिल्म का ये नगमा सुना। श्रोताओ, जीवन ईश्वर की अनुपम देन है। यह केवल सांसों का नाम नहीं है, बल्कि चेतना, विवेक और सत्कर्मों की एक यात्रा है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका शरीर नहीं है, बल्कि उसकी जागृत बुद्धि और संयमित मन है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य की सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह नहीं है कि वह जो चाहे कर सके, बल्कि यह है कि वह जो अनुचित है उसे करने से अपने आप को रोक सके। और श्रोताओं, जो मनुष्य अपने विवेक पर नियंत्रण खो देता है, तब वह किसी न किसी नशे का शिकार हो जाता है। नशा केवल शराब, तंबाकू, गुटखा या मादक पदार्थों का ही नहीं होता है। अहंकार, लोभ, क्रोध, पद और धन का नशा भी मनुष्य की दृष्टि को, उसकी बुद्धि को धुंधला कर देता है। हर प्रकार का नशा मनुष्य से उसका संतुलन, उसका विवेक, उसकी समझ और अंततः उसकी पहचान छीन लेता है। श्रोताओं, नशे की शुरुआत जो होती है अक्सर बहुत साधारण लगती है। सिर्फ एक बार दोस्तों के साथ तनाव दूर करने के लिए यह शौकिया, लेकिन यही जो एक बार नशा किया जाता है वो धीरे धीरे आदत बन जाती है और आदत लत बन जाती है और लत जीवन का सबसे बड़ा बंधन बन जाती है। श्रोताओं, नशा कभी मित्र बनकर नहीं आता। वह मुस्कुराते हुए प्रवेश करता है और धीरे धीरे जीवन का स्वामी बन बैठता है, मालिक बन जाता है। फिर आपकी चलती नहीं है, आप गुलाम हो जाते हैं नशे के। आज यदि हम अपने चारों ओर देखें तो नशे के दुष्परिणाम किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण नशे की अवस्था में वाहन चलाना है। अनेक परिवार घरेलू कलह, हिंसा और आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि परिवार का कोई सदस्य नशे का आदी हो चुका है। हॉस्पिटल में, अस्पतालों में बढ़ते लीवर, फेफड़ों, हृदय और मानसिक रोगों के पीछे भी नशे की बड़ी भूमिका है। अपराध, आत्महत्या, बेरोजगारी, पारिवारिक विघटन और सामाजिक असुरक्षा, इन सब के पीछे भी नशे का विनाशकारी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। श्रोताओं, सबसे अधिक चिंता का विषय यह है कि आज हमारे युवा

जाल में फंसते जा रहे हैं। उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं या रोजगार के लिए जब बच्चे अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, तब कभी कभी वे गलत संगति, साथियों के दबाव या आधुनिकता के दिखावे में नशे का प्रयोग कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि इससे तनाव कम होगा या वे अधिक आधुनिक दिखाई देंगे, लेकिन धीरे धीरे यही प्रयोग उनकी पढ़ाई, उनकी हेल्थ, उनकी स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और भविष्य को निगलने लगता है। श्रोताओं, याद रखिए कि मित्र वही है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए, न कि रास्ते से भटका दे। यदि कोई मित्र आपको नशे की ओर प्रेरित करता है तो वह आपका मित्र नहीं है, शुभचिंतक तो हो ही नहीं सकता। आपके माता पिता ने अपने सुखों को त्याग करके आपको शिक्षा का अवसर दिया है, उनके विश्वास और अपने सपनों की रक्षा करना आपका प्रथम कर्तव्य है। क्षणिक आनंद के लिए अपने उज्जवल भविष्य को कभी भी दांव पर मत लगाइए और नशे से दूर रहिए। बातें और भी करेंगे, एक गीत सुनते हैं।

अभी आपने अप्रैल फूल फिल्म का नगमा सुना, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के स्वर में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और शंकर जयकिशन ने संगीतबद्ध किया है। श्रोतो, भारतीय संस्कृति ने सदैव ही संयम को जीवन का सर्वोच्च आभूषण माना है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। इसलिए नशे से संघर्ष किसी पदार्थ से नहीं, बल्कि अपने मन की दुर्बलताओं से है। और यदि हम सचमुच वास्तव में नशा मुक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो केवल कानून पर्याप्त नहीं होंगे। परिवारों को संस्कार देने होंगे, विद्यालयों को जागरूकता फैलानी होगी और समाज को भी स्वस्थ वातावरण देना होगा और प्रत्येक नागरिक को स्वयं उदाहरण बनना होगा। नशे से बचने के कुछ सरल उपाय हैं। अच्छी संगति का चुनाव कीजिए, योग, प्राणायाम, खेल और नियमित व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाइए। तनाव को नशे से नहीं, संवाद और सकारात्मक सोच से दूर कीजिए। पुस्तकों, संगीत, सेवा और सत्संग से अपने मन को समृद्ध बनाइए। और यदि कोई व्यक्ति नशे का शिकार हो चुका हो, तो उसका उपहास नहीं, बल्कि सहानुभूति, परामर्श और उपचार की व्यवस्था कीजिए। याद रखिए, नशा मनुष्य को कुछ देता नहीं है, केवल उससे छीनता है उसकी सेहत, उसका स्वास्थ्य, उसका सम्मान, परिवार, संपत्ति और अंततः उसका जीवन भी। इसके विपरीत ज्ञान का नशा, सेवा का नशा, राष्ट्रभक्ति का नशा और उत्कृष्ट कर्म का नशा मनुष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। तो आज इस प्रभात बेला में हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम स्वयं किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहेंगे, अपने परिवार और समाज को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे और विशेष रूप से अपने युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित, उज्जवल और सफल बन सके। और लीजिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एक गीत के साथ।

श्रोताओ, अभी आपने साजन बिन सुहागन फिल्म का नगमा सुना यशुदास की आवाज़ में। इसी के साथ सुप्रभात से संजीव कालिया को अनुमति दें। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुप्रभात कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कोटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार प्रभात का रिले हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
3: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमी कंडक्टर संयंत्र में

0: चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
2: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
3: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी

0: आमंत्रित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
1: मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है। बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश।

0: बना 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा। ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने घेरा। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान, और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस नेक्स्ट फेज ऑफ रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान टू गिव फिलिप टू एयर ट्रैवल इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udaan in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udaan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
3: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
2: Prime Minister Modi also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. Mr. Modi highlighted that the architecture and interior of the new terminal are trending on social media.
3: Jodhpur mein naye airport terminal ka udghatan kiya gaya hai aur main social media mein dekh raha tha. ये नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर, इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
2: सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू आल्सो सेड दैट द लॉन्च ऑफ द विकसित उड़ान स्कीम विल मार्क द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियाज रीजनल कनेक्टिविटी जर्नी। Mr. Naidu said, the scheme launched by Prime Minister with an outlay of over 28,840 crore rupees will facilitate the development

0: Delhi Transforming, has chosen a new direction for cleaner, more modern future. Sunday Times informs City Court cites Supreme Court order, denies bail to Sharjeel Umar. Telegram told to act against piracy or face action, writes the Economic Times. And finally, Indeed, love knows no bounds. The Sunday Express writes about one Zeeshan Ahmed who crossed the LOC to meet his love, Ira Majid. The two had fallen in love over Snapchat. A month after he crossed LOC for love, 22-year-old POK man sent back. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi launches next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udaan to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities. Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में फिजाई सफर को फरोग देने के लिए इलाकाई फिजाई राबता स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी कीमत में 13% का इजाफा करते हुए इसे 2,125 रुपए फी कुंटल कर दिया है ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने अगले कुछ दिनों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कबल भारत को अहम इक्तिसादी शराकत दार करार दिया है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों और दूरदराज के इलाकों को हवाई सफर से जोड़ने के मकसद से कल राजस्थान के जोधपुर में इलाकाई फिजाई कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उड़ान स्कीम के नए मरहले के तहत छोटे शहरों और दूर दराज के खितों को फिजाई कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ा जाएगा।
3: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
2: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का भी इफ्तिताह किया जिससे भारत के शहरी हवाबाजी के बुनियादी ढांचे और इलाकाई कनेक्टिविटी को बड़े पैमाने पर फरोग हासिल होगा। जनाब मोदी ने इस बात को नुमाया किया कि नई टर्मिनल इमारत का आर्किटेक्चर और इंटीरियर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।
3: जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
2: इस मौके पर शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान स्कीम का आगाज इलाकाई कनेक्टिविटी के भारत के सफर में नए बाब की शुरुआत होगी। जनाब नायडू ने कहा कि वजीर आजम के जरिए 28,840 करोड़ रुपए की तखमीना लागत वाली स्कीम के आगाज से 100 से ज्यादा नए और 200 हेलीपैड्स की तरक्की में आसानी होगी जिससे किफायती हवाई सफर का लाखों लोगों का ख्वाब पूरा होगा और उभरते भारत की उमंगों की तकमील होगी।
4: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर

0: इकोनॉमी पे के वहां पे बिजनेस पे विद्यार्थियों पे हर हर क्षेत्र के वर्ग को हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है, उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
1: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सनात में सीजी सेमी के बाहर से मंगाए गए सेमी कंडक्टर की तरतीब और तजुर्बे के जदीद तरीन प्लांट OSAT का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और टेक्नोलॉजी शोबे के कई आलमी कायदीन भी मौजूद थे। 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी से कायम इस जदीद फैक्ट्री की सालाना पैदावारी सलाहियत 5 अरब सेमी कंडक्टर चिप्स तक होगी। एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि सनान में कायम सीजी सेमी OSAT मरकज न सिर्फ मुल्क में चिप तैयार करने के इको निज़ाम को मजबूत करेगा बल्कि टेक्नोलॉजी के शोबे में खुद किफालत को फरोग देगा और आलमी सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन में भारत के मकाम को मजीद मुस्तहकम करेगा।
2: भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमी कंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: उन्होंने मजीद कहा कि सनानंद का ये प्लांट इब्तदाई मरहले में सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने सीजी सेमी को मुस्तकबिल में पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर करने पर मुबारकबाद भी दी।
2: यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी। आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: इससे कबल सनानंद पहुंचने पर वजीर आजम ने आला टेक्नोलॉजी के हामिल प्लांट का दौरा किया, पैदावारी अमल का मुआयना किया और वहां काम करने वाले इंजीनियरों और ऑपरेटरों से मुलाकात करके उनसे तबादले ख्याल किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी की कीमत में 13% इजाफा कर दिया है। प्याज की खरीदारी कीमत 1,875 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 2,125 रुपये फी क्विंटल कर दी गई है। सारिफिन के उमूर खुराक और सरकारी निजाम तकसीम की वजारत के मुताबिक नजरसानी शुदा खरीदारी कीमत से प्याज के काश्तकारों को बेहतर मुनाफा मिलेगा जबकि कीमतों के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की खरीदारी अमल को भी तकवीत मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: भारत सरकार की जानिब से प्याज का वाफिर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी नैफेड और कौमी कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF के जरिए जारी है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के महकमे 2025-26 के दूसरे पेशगी तखमीने के मुताबिक मुल्क में प्याज की पैदावार 307 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा होने का इम्कान है। वजारत ने बताया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्याज की मौजूदा ज़खीरा काफ़ी है और इस वक्त ज़खीरा शुदा प्याज की किल्लत के कोई आसार नहीं है। इस वक्त मुल्कगीर सतह पर प्याज की औसत खुर्दा कीमत 31 रुपये फी किलोग्राम है। जून 2026 के दौरान तकरीबन 1.5 लाख मैट्रिक टन प्याज बरामद की गई और प्याज की बरामदात मामूल के मुताबिक जारी है। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने मुतला किया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हुकूमत की जानिब से 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास तरब करने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब किरण रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल उमूर पर बामाने बहस, तफसीली तबादले ख्याल और अहम फैसलों पर तवज्जो दी जाएगी। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नया तसव्वुर नहीं है बल्कि इसका इस्तेमाल एक सदी से भी ज्यादा अरसे से हो रहा है। राजस्थान में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हयातियाती ईंधन की आमेजिश के प्रोग्राम पर होने वाली मुस्बत तनकीद का खैर मकदम करती है और जहां जरूरत होगी मौसूल होने वाली तजावीज को अपने काम में शामिल करते हुए इस्लाहात भी करेगी। जनाब हरदीप सिंह पुरी ने मजीद कहा कि भारत में एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का तसव्वुर सबसे पहले साबिका कांग्रेस हुकूमत के दौर में शुरू किया गया था।

0: उन्होंने बताया कि जब वो 2006 से 2008 के दरमियान ब्राजील में भारत के सफीर थे, उस वक्त मुल्क की 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाने का हदफ मुकरर किया गया था, लेकिन उस वक्त सिर्फ 1.4% एथेनॉल मिलाने का हदफ हासिल किया गया था।
1: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: आकाशवाणी खबरों का शोभा अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के तहत आज शजरकारी और माहौलियाती तहफ्फुज के लिए काम कर रहे देवेंद्र सूरा से की गई बातचीत नशर की जाएगी।
2: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये बातचीत आज सुबह 10:30 101.1 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुनी जा सकती है। इस बातचीत को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के मुजव्वजा दौरे से कबल भारत को ऑस्ट्रेलिया का एक अहम इक्तिसादी शराकत दार करार दिया है। एक बयान में ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म के दफ्तर ने कहा है कि दुनिया की चौथी बड़ी और तेजी से तरक्की पजीर मईशत होने के नाते भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए नहायत अहम इक्तिसादी शराकत दार है। जनाब एंथनी अल्बानीज ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर मबनी है जो मजबूत इक्तिसादी और सकाफती रवाबित की बुनियादों पर कायम है। उन्होंने मजीद कहा कि तिजारत, दिफा, सलामती और टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तआवुन दोनों ममालिक के लिए मुस्बत और बाहमी फायदे का बाइस बन रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरेन, कुवैत और उमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। तीन मुल्कों के अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर इन मुल्कों के अपने हम मनसबों और आला क्यादत से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा के मुताबिक इस दौरे का मकसद भारत और मजकूरा मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना और इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करना है। उमान के दौरे के बाद डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क जाएंगे जहां वो अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC की 2028-29 की मुद्दत कार के लिए भारत की बाजाबता मुहिम का आगाज करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कहा है कि अगले कुछ दिन के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की शदीद बारिश जारी रहेगी। IMD ने कहा है कि खलीज बंगाल के शुमाल मगरिब में हवा के कम दबाव का हल्का बना है जिससे अगले 4 से 5 रोज के दौरान मुल्क के वसते इलाकों में मानसून के सरगर्म रहने का इम्कान है। पूरे मशरकी अमरीका में जारी शदीद गर्म लू की वजह से बिजली की ग्रिड्स पर दबाव पड़ रहा है जिससे फीफा आलमी कप मैचों की तैयारियों में रखना पड़ रहा है। एक तरफ जहां दर्ज हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से पार कर जाने का खदशा है, वहीं अमेरिका के सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाला शहर न्यूयॉर्क को गैर मुतवक्का दर्जे हरारत का सामना है। फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस ने फिलाडेल्फिया में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में पेरागुआ को सख्त मुकाबले में 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम के कप्तान कल्याण एम्बापे ने मैच का वाहिद गोल 17वें मिनट में पेनाल्टी किक के साथ किया। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर।
4: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबार ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि मगरबी एशिया में जारी आलमी तवानाई बहरान के बावजूद भारत ने न सिर्फ ईंधन की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया बल्कि मौसर सिफारतकारी बरवक्त फैसलों और गुज़िश्ता एक दहाई की दूरंदेश पॉलिसियों की बदौलत इस मुश्किल सूरत हाल पर कामयाबी से काबू पाया गया है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आगाज 20 जुलाई से होगा जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। कौमी अहमियत के हामिल

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के कोटम सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं कुछ भक्ति रचनाएं।

0: श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आपने जगजीत सिंह के स्वर में भक्ति रचनाएं सुनी। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 9 बजने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू। 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा की बजट की ये योजना शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की और प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में तेज बारिश, पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग का वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र में हर वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: गौरतलब है कि यह भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है। इससे पहले 28 फरवरी को पहला और 31 मार्च को दूसरा प्लांट शुरू हुआ था। कैबिनेट में 12 प्लांट स्वीकृत किए गए थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया है। श्री मोदी ने कल जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के दौरान इस योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपये से ज्यादा बजट के साथ शुरू की गई ये योजना शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि ये योजना 100 से ज्यादा नए हवाई अड्डों और 200 हेलीपैड के विकास में मदद करेगी, जिससे लाखों लोगों के लिए किफायती हवाई यात्रा का सपना साकार होगा।

0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। बालोतरा में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करते हुए सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी।
1: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कल उदयपुर शहर की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जा रही देवास पेयजल परियोजना स्थल का दौरा किया। उन्होंने निर्माणाधीन टनल और बांध कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने टनल निर्माण स्थल पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास का संदेश दिया। उदयपुर के भविष्य की जल सुरक्षा के लिए इस परियोजना को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि इसके पूरा होने से उदयपुर शहर को लंबे समय तक स्वच्छ और पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध होगा, साथ ही पिछोला फतह सागर झीलों के जलस्तर को बनाए रखने में भी ये परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि इससे प्याज की खेती करने वाले किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी सहायता मिलेगी। सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। मंत्रालय ने बताया कि देश में प्याज का पर्याप्त स्टॉक है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र के प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रदेश में भीषण गर्मी के बाद मॉनसून की दस्तक के साथ ही मौसम जनित बीमारियों के बढ़ने से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर हैं। डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव के लिए राज्य के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इनमें आमजन को जागरूक करने के साथ ही अस्पतालों में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि यहां जांच करें, सफाई करें और ढकें थीम पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर पहुंचकर लार्वा सर्वे और जन जागरूक गतिविधियों के माध्यम से लोगों को सतर्क किया जा रहा है।
2: जिले में जुलाई माह को डेंगू रोकथाम माह के रूप में मनाया जा रहा है। जांच करें, सफाई करें और ढकें थीम पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू नियंत्रण और बचाव के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर पानी की टंकियों, कूलरों, ड्रमों, गमलों, फ्रिज की ट्रे, पुराने टायर और अन्य जला भराव वाले स्थानों की जांच कर लार्वा नष्ट कर रहे हैं। साथ ही आमजन को स्वच्छता बनाए रखने, पानी जमा नहीं होने देने और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। बाकी वैरी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून की दस्तक अब पश्चिमी जिलों तक पहुंच रही है। कल बाड़मेर के चौहटन और गडरा रोड इलाके में तेज बरसात हुई। इसके अलावा बायतू, रामसर और धनाऊ क्षेत्र में हल्की से मध्यम बरसात होने के समाचार हैं। जैसलमेर में हुई तेज बरसात से आमजन को गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में राज्य के कुछ और भागों में मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में आगामी 4-6 दिन मॉनसून सक्रिय रहने और अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की चेतावनी है। राजस्थान कर्मचारी

0: बोर्ड द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा आज प्रदेश भर में दो पारियों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा का पहला चरण सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरा चरण दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने, प्रवेश पत्र और वैध फोटो युक्त पहचान पत्र साथ लाने तथा परीक्षा संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू। 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा बजट की ये योजना शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की और प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में तेज बारिश, पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम पर 909 किलोहर्ट्ज, एफएम पर 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक प्रातः के 9:10 हो चुके हैं। राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम मरुमंगल में आज कलाकार हैं भारती सोनी। लीजिए सुनिए इन्हीं के स्वर में कुछ लोक रचनाएं।

श्रोताओं, अभी आप राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल सुन रहे थे। कलाकार थी भारती सोनी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहले सुने इंतकाम फिल्म के लिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए, शागिर्द फिल्म के लिए ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने दिया है।

श्रोताओं, अभी आपने शागिर्द फिल्म के लिए लता मंगेशकर को सुना, और लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम है धरती। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, अभी आपने चिराग फिल्म के लिए मोहम्मद रफ़ी को सुना। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी, संगीत मदन मोहन ने दिया था। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपने रेडियो मित्र संजीव कालिया के साथ। हम आपको याद दिला दें, आज प्रातः 10 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे। लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए चितचोर फिल्म के लिए यशुदास और हेमलता को।

श्रोताओं अभी आप फिल्म संगीत कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम पर 909 किलोहर्ट्ज़, एफएम पर 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक प्रातः के 10 बज चुके हैं और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज संजीव कालिया का नमस्कार। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का पहला गीत।

शोधो अनामिका फिल्म का नगमा आपने सुना और सुनना चाहते थे आप सब। चक 5 MD पतरोड़ा अनूपगढ़ से, मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और सुनील जनागल। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी। जसपुर उत्तराखंड से ये संदेश दिया, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर ने। गांव जलालपुरा, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति, आर्यन, लविश और इनके साथ हैं मुनेश देवी प्रजापति। परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर। और ये संदेश है, हमें मिला है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सविस्ता मोहम्मद नसीब और पलक लुबना और यश मंसूरी ने हमें संदेश दिया है। अली का डबवाली से बसंत सिंह चन, यशिका, युवराज गांधी, कुलदीप गांधी अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाते हैं।

आप कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। चक 14 पीएसबी से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज बिरख और इनके साथ हैं लाला वेली। और श्रोताओ, ये 15 पीएस गांव से हम तक संदेश आया है। लिखने वाले श्रोता हैं सर्वजीत सिंह जोशन, सर्वजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्श पाल जोशन मेलबर्न और रोबिन सिंह जोशन वैंकूवर से। और कंवर कॉलोनी बड़वाह, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं प्रवीण शिमाली और मीना शिमाली। इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, कृष्ण मायल और हनुमान सहारन ने। और इनके साथ हैं किड्डूराम जोईया, लीलाधर स्वामी और कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा भी इनके साथ हैं। और लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए अपनी पसंद का अगला नगमा। पारस मणि फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में असद भोपाली ने इसे लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत से सवारा है।

श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना पारस मणि फिल्म के लिए, वो जब याद आए बहुत याद आए। और इस गीत को सुनने के लिए हमें याद किया श्री करणपुर से पवन कटारिया, समीर कटारिया, शालू कटारिया। रानी बाजार बीकानेर से रानी झांब और बिट्टू झाम ने, भोपाल मध्य प्रदेश से मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता लाली श्रीवास्तव, आशा, राधिका और श्रीवास्तव परिवार। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और इनके साथ हैं शिवांगी धाकड़। बहलोल नगर से हमारे श्रोता हैं हरीश हैरी, जगतार जहरी, सुशील डेलू और राकेश चाहर। कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम और इनके साथ हैं कमल कुमार और मोहम्मद अफजल मलिक। और ये संदेश हम तक पहुंचा है, हमारे श्रोता हैं गांव अरायन से बनवारीलाल, जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल और पूनम चालिया। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा भी इनके साथ हैं। ये संदेश हम तक पहुंचा है, गाउन 4M लिखा है। अब ये गांव 4M है या स्थान का नाम गाउन है ये स्पष्ट नहीं है। लिखने वाले श्रोता हैं कुलविंदर सिंह, सुखप्रीत सिंह और जसदीप सिंह। और श्रोताओं, ये संदेश हम तक आ गया है ग्राम पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर ने भी

अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा दी है। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय अपनी पसंद हम तक प्रेषित करते हैं। और लीजिए श्रोताओ, अब सुनिए अपनी पसंद का अगला नगमा। फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है। स्वर दिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत है।

श्रोताओ, अभी आपने फिल्म जब प्यार किसी से होता है का नगमा सुना। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। इस गीत को सुनने के लिए आप सबने हमें अपने प्यारे संदेश भेजे। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, और केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल ठठई, मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशी राम महिंद्रा, हीरालाल गजरा, और इनके साथ हैं अशोक मित्तल और ताराचंद दाइमा।

दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा का संदेश भी हम तक पहुंचा है। गांव हीरावली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण रेनवा, हंसराज भाटिया, मणिराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल। और इसके अतिरिक्त ये संदेश है सादुल शहर से।

हंसराज भाटिया, मणिराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल, और इसके अतिरिक्त ये संदेश है सादुल शहर से, रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और उनके परिवार के सदस्यगण। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा और अनस और रेहान का संदेश भी हम तक पहुंच गया है। गांव घमंडिया से जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति, शिवम ढूकिया, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना और इनके साथ हैं विष्णु ढूकिया और दोहिती इवा धारणिया। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छींपा, कपिल छींपा, ईशान छींपा और पूजा परिहार ने भी हमें याद किया, संदेश भेजा और कार्यक्रम में शामिल हुए। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन और माहिरा नूर ने हमें संदेश प्रेषित किया है। इस गीत को सुनना चाहा अमरगढ़ सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, कुलविंदर कौर मान, हरविंदर मान, राज सिंह प्रीत मान इनके साथ हैं। और नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी का संदेश भी आ गया है। गांव कोहला हनुमानगढ़ से महावीर सुथार, सुनील सुथार, मोहन सुथार, भजनलाल मेला, पवन, नरेंद्र सुथार ने भी हमें याद किया है, अपना संदेश दिया, अपनी पसंद हम तक पहुंचाई। और गांव फरांसी जिला हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और इनके साथ हैं हमेशा की तरह सौरभ डूडी। और श्रोताओं, ये संदेश है सहारनपुर से, गांव कुम्हार हेड़ा इनकी इनका निवास स्थान, वहां से ये लिखते हैं। सैयद मसरूर, शाइना हसन अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब इनके साथ हैं। बठिंडा रोड मंडी डब्बवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग की फरमाइश भी हम तक पहुंची है। जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल इनके साथ हैं, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल भी इनके हमरा हैं। सांगली जिले के जत शहर से हमारे नियमित श्रोता हैं अल्ताफ हुजरे, शेफुल्ला, सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख। और लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए अपनी पसंद का अगला नगमा। ये गीत है फिल्म दिल ने फिर याद किया से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, जी एस रावल का गीत है और सोनिक ओमी ने संगीत दिया है। लीजिए सुनिए।

श्रोताओ, अभी आपने दिल ने फिर याद किया फिल्म का नगमा सुना, कलियों ने घूंघट खोले हर फूल पर भंवरा डोले। इस गीत को सुनने के लिए आप सब ने हमें खत लिखे और संदेश प्रेषित किए। ये खत हमें मिला है गांव दौलतपुरा श्री गंगानगर से, शोलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू मोहित हेमंत और इनके साथ हैं अंजू बेनीवाल। गांधी चौक रोकपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जेतंग बिरक और मीका बिरक का पत्र है। और गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, इनके साथ हैं पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। और श्रोताओं, ये संदेश है गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से, प्रेम सहारण मोनिका, मनीष सहारण का। और ये है हमारे श्रोता पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से, संदीप माकड़, ज्योति माकड़ और इनके साथ हैं मन्नत, भरत और कमल साहनी। कलानोर से नरिंदर शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा ने हमें अपनी पसंद भेजी। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत ने संदेश प्रेषित किया। और गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, इनके साथ हैं योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया।

0: आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और इनके साथ हैं शाइना और निवान शर्मा। और श्रोताओ, ये पसंद हम तक पहुंची है गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक की। बिल्लू सूद, सुनीता सूद, आशीष सूद, चांदनी विश्वजीत हमें संदेश प्रेषित करते हैं मंडी केसरी सिंहपुर से। पलोरी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुनाराम देवांगन और कृष्णा देवांगन का संदेश भी हम तक पहुंच गया है। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं मुकेश गोस्वामी, मधु आशी, शिवन्या और अनु गोस्वामी। तहसील भादरा अनूप शहर से गजानंद सारस्वत, ताराचंद सारस्वत, सोनू पवन, पवन कुमार, साहिल राघव, उपेश कुमार, मुरारी लाल शर्मा, ममता मीतू कीनू, मदन लाल शर्मा, फूसा राम मिल, महावीर लोहरा और उनका परिवार भी हमें सुन रहा है, उनकी पसंद भी हमने शामिल कर ली है। उदयपुर राजस्थान से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनित नाचानी, बाबू भाई चांदीवाला का संदेश भी हम तक पहुंच गया है। और लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए अपनी पसंद का अगला गीत साजन फिल्म से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया है, आनंद बख्शी ने लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने सुरबद्ध किया है।
1: रेशम की डोरी

शुदा भी आपने साजन फिल्म का नगमा सुना, लता और रफ़ी की आवाज़ों में। सुनना चाहते थे आप सब सूरतगढ़ से संजीव मदान और उनका परिवार, गांव पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से बलकर्ण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा और प्रहलाद राजेंद्र वर्मा। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाहकर, निर्मला नहवाकर और विशाल नहवाकर का ये संदेश हम तक पहुंच गया है। अलीका तहसील डबवाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी सोनू, रजनी और उनके परिवार के लोग। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। मामूलबाड़ी महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं सोपान ताइड़े, बसंतराव भोजने और पीएस नहावकर। गांव ढाणी लाल खां, जावेद खां, अरमान खां, इमरान खां, सीमा बानो, विनोद खां, सोहिल खां, जुनेद खां, मुखराम जी, आरिफ खां, ईयान खां, अरशद खां, इनके साथ हैं अरमान खां और उनका परिवार। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ने हमें संदेश दिया और ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, इनके साथ हैं अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के शेष बचे हुए सदस्य। ये संदेश हम तक पहुंचा है नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से। श्रोता हैं रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिवांश वर्मा और मदनलाल वर्मा। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से हमें संदेश भेजा मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, इनके साथ हैं साजदा रानी और हिना कोसर। गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से ये संदेश आया है अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानु प्रताप सिंह पवार और समस्त राजपुताना परिवार का। नरेंद्र भाटी, वीना भाटी हमें लिखते हैं गणेश चौक रातानाड़ा जोधपुर राजस्थान से। हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण, मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव, कांता चौधरी और उनके परिवार के लोग। मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत और निशु अपनी पसंद हम तक प्रेषित करते हैं और ये संदेश है करनाल से और श्रोता हैं सुधीर, नूतन, संदीप, गुगलानी

जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर और शशि बाला इनके साथ हैं। एमएलबी रोड ग्वालियर से हमारे श्रोता हैं सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव खुराना और एस के पप्पी। एक संदेश और शामिल करते हैं इस गीत के लिए। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टवूल और पीवी कुलथे ने हमें याद किया बीड शहर महाराष्ट्र से। और लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए अपनी पसंद का अगला गीत। सहरा फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है और रामलाल ने संगीत दिया है।

श्रोताओ, अभी आपने सहरा फिल्म के लिए लता और रफ़ी को सुना। सुनना चाहते थे आप सब लखुवाली हाइट्स से मास्टर भवनलाल, कृष्णा विशाल, राजबाला, ममता, लक्षिता, नव्या, मोहम्मद रफ़ीक, महावीर लोहरा, मुकना राम और उनके परिवार के लोग। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, जयवीर सिंह और इनके साथ हैं शुभचंद्र बजाज कालका और साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। सूरतगढ़ से पवन कुमार, लेखराज, रवि, सुरजीत सिंह, कुंदन लाल भी हमें संदेश प्रेषित करते हैं और हितेंद्र दास हमें मैसेज भेज रहे हैं आसाम से। पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और इनके साथ हैं हमेशा की तरह गुड्डू। गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती और उनके परिवार के लोग। गांव बनवाला हनवंता फाजिलका पंजाब से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और समस्त मायल परिवार हमें याद करता है, हमें संदेश प्रेषित किया और वो शामिल किया गया। और लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनिए कन्यादान फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। सुनना चाहते हैं आप सब पाकड़ू झारखंड से उत्तम कुमार, श्वेता भगत, किसु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। बोरखेड़ा पित्रामिल जिला उज्जैन से विनोद मूनत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूनत और उनका परिवार। प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत हमें लिखते हैं भुच्चो कैंचियां बठिंडा पंजाब से। लीजिए आप सब सुनिए।

श्रोताओं, अभी आप सदाबहार लग में सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के साथ मैं लक्ष्मी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, शब्द जब थक जाते हैं तब सुर बोलते हैं, आंसू जब रुक जाते हैं तब गीत बोलते हैं। संगीत केवल मनोरंजन नहीं, ये मनुष्य की आत्मा का सबसे सुंदर भाषा होती है। तो आइए इस संगीत के सफ़र की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत से।

मोहम्मद अजीज़ और अलका याग्निक को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था इज्जतदार। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

याद रखेगी दुनिया। इस फिल्म में अभी आपने मोहम्मद अजीज और साधना सरगम को सुना। गीत लिखा था समीर ने और संगीत था आनंद मिलन का।

लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में कब तक चुप रहूंगी फिल्म का ये गीत। गीत के बोल SH बिहारी के हैं और संगीत बप्पी लहरी का।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को सुना भी आपने। फिल्म का नाम था रास्ते प्यार के। गीत की रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आप सुन रहे हैं आशा भोसले और कुमार सानू को। फिल्म का नाम है बलमा। गीत की रचना समीर की है और संगीत से सजाया है नदीम शवन ने।

आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज को। फिल्म का नाम है सिंदूर। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था सूर्या। गीत के बोल संतोष आनंद के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

बोल मजरू सुल्तानपुरी के थे और संगीत आनंद मिलन का। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर आप कार्यक्रम सुनेंगे कुछ बातें कुछ गीत। सुगम संगीत का समय रहेगा 12:30 पर। खेत खलियान कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:50 पर।

बहनें अपना कार्यक्रम महिला जगत सुनेंगी दिन में 1:05 पर। इसमें आज आप सुनेंगी वन है तभी जीवन है, आयुष्मान भारत योजना, मोबाइल चार्जिंग के समय रखें सावधानी, चॉकलेट से बनी हेल्दी डिशेस।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। युवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5 बजे। इसमें आज आप सुनेंगे युवा जीवन में संगति का प्रभाव, जीवन का आधार किताबें, शिक्षा में रेडियो का महत्व, आओ जानें भटनेर हनुमानगढ़ किले को और आज का इतिहास।

सरायकी कहाँ से मैं रहेगा शाम 6:05 पर झीले की चिट्ठी कार्यक्रम आप हमारे जयपुर केंद्र से सुनेंगे 6:40 पर।

शाम 7 बजे आप सुनेंगे लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम लंदन में आयोजित होने वाले आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले फाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ टू कमेंट्री का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम के साथ मैं लक्ष्मी, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जीवन की सबसे सुंदर बात

ये है कि हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। कभी मुस्कुराना, कभी बिछड़ना, कभी प्रेम, कभी प्रतीक्षा, तो कभी उम्मीदों के दीप जलाए रखना। समय बदलता रहता है, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समय के हर पड़ाव पर हमारे साथी बने रहते हैं। तो लीजिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। कहा गया है कि प्रेम कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफ़र है जो इंसान को बेहतर बना देता है। इश्क वो एहसास है जो उम्र से बनता नहीं, दिल जहाँ झुक जाए वही उसका घर होता है। कटी पतंग फिल्म का ये गीत प्यार दीवाना होता है। शक्ति सामंत के निर्देशन और निर्माण में बनी ये फिल्म, इस गीत को अमर बना दिया किशोर कुमार ने और संगीत RD बर्मन का। गीत के बोल रचे थे आनंद बख्शी ने। तो सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, जीवन की लंबाई नहीं, उसकी गहराई मायने रखती है। हर सांस को मुस्कुरा कर जी लिया जाए तो छोटी सी उम्र भी एक मुकम्मल कहानी बन जाती है। अब सुनिए बड़े दिल वाला फिल्म का ये गीत, आवाज़ किशोर कुमार की, संगीत आर डी बर्मन का और गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के।

दोस्तों, प्रेम केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीवन का सबसे सुंदर अनुभव है। मोहब्बत इंसान को छोटा नहीं करती बल्कि उसके भीतर छिपे सबसे बड़े इंसान को जगा देती है। दिल से निकली दुआ बन जाती है मोहब्बत, रूह से रूह का रिश्ता कहलाती है मोहब्बत। तो लीजिए सुनते हैं प्रेम रोग फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, दौलत, शोहरत, ओहदे सब यहीं रह जाते हैं। साथ अगर कुछ जाता है तो मोहब्बत और नेकियां। रिश्तों की गर्माहट से ही जीवन में उजाला रहता है। तो सुनते हैं त्रिशूल फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, ज़िंदगी की किताब में हर दिन नया अध्याय लिखिए। नफ़रत की जगह मोहब्बत का पैगाम लिखिए। जब भी मिलें किसी से, मुस्कान साथ रखिए। इसी के साथ ही कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे गज़ल गायक गुलाम अली को।

मिले और पशु को जो को स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहे। तो इन खातर भी अपना जो का पशु है बांगो जो को खान पान है बांगो जो को चारो है बांगो जो को आहार है बिंगो भी अपने टेम सर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप पशुओं ने अच्छो आहार देंगा तो अपना जो का पशुधन है वो स्वस्थ रहेगो निरोग रहेगो और अपना जो की आमदन है अपन जो कि यहाँ के इसका दूध घी की बात है वह भी अच्छी मिलेगी। तो बात करें किसान भाइयों आज संतुलित आहार की, तो पशुओं के शारीरिक विकास खातर कई तरीके जगह आहार है भी अपने संतुलित आहार के रूप में अपने देना पड़े। जी पशुओं की खुराक जो कि अच्छी होनी जरूरी है और जी अपने भोजन में कई तरीके पोषक तत्व और विटामिन की जरूरत पड़े जी हरी सब्जियां है फल है या फिर दूध घी की बात है। तो बेहतरीन अपना जगह दुधारू पशु है बने भी खुराक है जी आप अच्छी देवा ताकि अपना पशु है जगह भी स्वस्थ रहे। पशुपालक भाइयों बियां देखा तो पशुओं ने अपना एक ही त्रियां जो को खुराक दे वो करा कई बार तो आपने जो का पशुधन है बे कई दिन तो बिना छतरियां खावे और ब्यू बाद गवा देखो फिर नाक मार ला जाए। तो अपन भी बात को ध्यान रखना जरूरी है का आपने जो का पशुधन है बने भी अलग अलग स्वाद को अलग अलग टेस्ट को जो को खुराक है वो अपने देना चाहिए। और आज अपन बात कर से संतुलित आहार के बारे में तो संतुलित आहार में कई त्रियां जगह पोषक तत्व है बे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और संतुलित आहार इशो आहार हुए जगह का प्रोटीन है वसो है कार्बोहाइड्रेट है खनिज लवण है विटामिन है और इनके अलावा कई तरीके और भी पोषक तत्व है जगह अपने दूध उत्पादन में भी अपन फायदा मिले और इनके अलावा जगह पशु ब्यांत पशु है बने भी कई तरीके कोई अबखाई है वा कोनी हुए नहीं। पोषक तत्वों की बात है जब तक किसान भाइयों तो अपन बात करांगा संतुलित आहार गमा किसी किसी पोषक तत्व है बंग बारे गमा जहाँ कार्बोहाइड्रेट है कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन है हाइड्रोजन से मिल के बने। और बात प्रोटीन की करा तो प्रोटीन को निर्माण है वो नत्रजन है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही वो है। प्रोटीन से पशुओं के शरीर का मांस बने बिया के इसका आप पशुओं की चर्बी है सांगो पांग बच जाए और शरीर की बढ़वार भी बढ़िया होने लग जाए। किसान भाई प्रोटीन से प्रतिरोधक क्षमता है वह अपने पशुओं के अंदर बदे और जका ब्यांत पशु है या फिर जका ब्यान वाला पशु है बंगे लिए भी प्रोटीन की जरूरत ज्यादा होवे और ब्यांत पशुओं ने प्रोटीन की जी की मात्रा है बा अपने संतुलित रूप में देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करें जी वसा की वसा पानी में ए घुलनशील होवे और ई शू पशुओं ने कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जगह तत्व है भी मिले वसा शू पशु के शरीर का मां ऊर्जा को निर्माण होवे और त्वचा है जकी भी अपनी पशु की चमकदार बने। और वसा की पूर्ति भाई लोगों अपन जो बिनोला खड़ है या फिर सोयाबीन है बीस आप पूरी कर सका। अब बात करें खनिज लवण की क्योंकि अपने जगह पशु है कई बार आप देखा कई बार डिखर खान ला जाए कई बार पशु है जगह कपड़ा खान ला जाए या फिर माटी खान ला जाए तो अपन ये समझना चाहिए कि अपन पशुओं ने खनिज लवण देना बहुत ज्यादा जरूरी है या यहाँ के इसका अपने पशु के शरीर का मां जगह खनिज लवण है बंगी कमी होगी। पशुओं के शरीर ने खनिज लवण की भी जरूरत के हिसाब से अपन देना जरूरी है इनके अलावा जहाँ लोहा आयोडीन मैंगनीज तांबा कोबाल्ट जस्ता ये जगह तत्व है वे अपने पशुओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हुए। और आपन जब भी संतुलित आहार तैयार करा तो आपन ने इन चीज को ध्यान रखना है पशुओं के आहार के अंदर ये चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और पशुओं ने खनिज लवण की पूर्ति खातर अपने हरे चारो है खल है या फिर खनिज मिश्रण से प्राप्त जो की चीजें हैं बांस आप पूरी कर सका। और इनके अलावा पशुओं ने टेम सर स्वच्छ एकदम पानी पियानो भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अपना जो पशुधन है बंगवा 75% जो को पानी है वो शरीर के अंदर हुए और सामान्य जो को पशु है बिना 35 से 40 लीटर पानी पियानो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पानी से ही दूध को निर्माण हुए और पोषक तत्वों ने एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना जो को काम है वो पानी के द्वारा ही हो जाए। रक्त निर्माण है वो भी अपने पशु जो का पानी पिए बिंग द्वारा ही हुए इनके अलावा पानी पियाने से पशु को जो को शरीर को तापक्रम है वो भी बढ़िया बने रहे और पाचन शक्ति ने भी बढ़ाने को काम है जो को पानी है जो को करे। अब बात करें आप संतुलित आहार है जो को तैयार किया करा तो भाई लोगों आप संतुलित आहार तैयार करने बीच अपन कई बातों को ध्यान रखना जरूरी है। पशुओं के आहार में दो चीजा मुख्य रूप से होनी जरूरी है जी चारो और दानो चारो अपन दो प्रकार को देश का एक तो सुक्को चारो और दूसरो रसदार चारो यानी अपन हरियो चारो भी बिन केस का सुक्का चारा का मां तूड़ी है या फिर जहाँ सुक्को घास है पराली है बिंग द्वारा अपन सुक्का चारो तैयार करके यार पशुओं ने हरिया चारा सा मिक्स करके या फिर दाना सा मिक्स करके भी अपन देश का। और भाई लोगो रसदार चारो भी दो तरियां को हुए एक तो लेग्यूमिनस और दूसरो नॉन लेग्यूमिनस अपन दो भागा में बांट सका। और लेग्यूमिनस जो कुछ चारो है वो बरसीम है काउपी है सोयाबीन या फिर कई तरियां जो दूसरो हरियो चारो है वो इंग अंदर आवे और अपन ने वो हरियो चारो है वो अच्छी तरह बारीक काट गए और पशुओं ने खिलाना चाहिए। और इंगे सागे सागे अपन ने हरिया चारे गए प्रोटीन युक्त दाणो है वो भी देना जरूरी है। और ज्यादा प्रोटीन वाले दाने की बात करें तो बिंगमा काउपी है कालो चनो है घोड़ा चनो है बंगाली चनो है बंगमा की वह प्रोटीन ज्यादा मात्रा

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलियान।
1: किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, बिया देखा तो आपने जो पशुपालक भाई है, वे खेती के सागे सागे पशुपालन को जो व्यवसाय है वो भी करे। तो जिया टाइम टाइम पर अपनी फसल ने खाद है, उर्वरक है, या फिर कई तरियांगा जका कीड़ा कांटा लगा है, रोग है, व्याधियां हैं, बांसु फसल ने बचाने खातर बांध बांध की जी दवाइयां हैं और कई तरियांगी जी खेचल है बापा करा भी तरिया। आप जो पशु धन है बिन आप अच्छी तरिया साल संभाल करके रखा, अच्छो उत्पादन लेवा, अच्छो दूध अपन

0: होवे तो आपां ने आ चीजां को भी प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि आपने जो को पशु है वो संतुलित आहार खावेगो तो भी आपां ने फायदो होवेगो। इन अलावा किसान भाइयों, पौधा से प्राप्त होने वाला ज्यादा प्रोटीन युक्त जका बाई प्रोडक्ट्स है जिया मूंगफली, सरसों, अलसी, बिनोला, नारियल और खड़ है या फिर चावल की छिलन है, बांसू आप पूर्ति कर सका। और जो दुधारू पशु है बन भी अलग अलग मात्रा में अपने संतुलित आहार है वो देणो है। पशुओं की शारीरिक वृद्धि खातर या फिर जीवन निर्वाह खातर अपने प्रसव काल का टेम गमा भिंग हिसाब से अपन चारों बजे को निर्धारित करना चाहिए, ताकि अपना जो को पशु है वो आगे जाके ब्यांत आल टेम या फिर कीतरियां की खाई वाली बात हो भी टेम कमजोरी ना महसूस करे। अब बात करें आप दाणों को मिश्रण है वो क्या तैयार करना है। मिश्रण खातर अपन की करना है कि गेहूं की जी चोकर है, कणक की जी चोकर है वह 35 भाग अपन लेनी है, चना की जी दाल है बिंगो भी 25 भाग अपन लेना है, इन अलावा बारीक दलेड़ा जो जगह है बे भी अपन 25 भाग लेना है, मूंगफली या सरसों की जी खड़ है वह 15 भाग अपन रखनी है, और खाने वाला जो को नमक है बुंगो 1 भाग अपन ने ई मिश्रण के अंदर मिलानो है। जब तक खनिज लवण की बात है किसान भाइयों, तो इंग मा अपन 1 भाग खनिज लवण रखनो है, तो इया करके अपन ने 102 किलोग्राम यानी कि 1 क्विंटल 2 किलो लगभग अपन ने जो को मिश्रण वो तैयार करनो है। इंग अलावा दूसरी तरीके की बात करें अपन तो जोगो जो को भाग है वो 9 किलोग्राम अपन रखनो है, जई है 9 किलोग्राम रखनी है, चोकर 72 किलोग्राम रखनो है, और मूंगफली की जकी खड़ है वह 5 किलोग्राम लेनी है, और बिनोला की जकी खड़ है किसान भाइयों वह 5 किलोग्राम रख के खनिज लवण मिश्रण है वो 2 किलोग्राम मिक्स करके अपन जो को आहार है वो तैयार करना है। तो वो जो को आहार है वो पशुआ ने बांगी उम्र के हिसाब वो बांगा शरीर के हिसाब से बांगा वजन के हिसाब से आपने बांट के दे देना चाहिए। जहाँ एक गाय को जो को वजन है वो 4 क्विंटल है, तो आपने 10 किलो दूध देने वाली गाय है बिन खतरा आपने 20 किलो बरसीम, 35 किलोग्राम तूड़ी और 3 किलोग्राम मिश्रित दाणो है वो अपन ने लेनो है। 10 किलोग्राम दूध से ज्यादा देने वाला जो को पशु है बी खतरा अपन ने 2.5 किलो अतिरिक्त अपन ने चारो है वो रखनो है। तो आ बातों को ध्यान रख गया पांच का अपना पशुधन है बना संतुलित आहार देश का, ताकि अपना जो का पशु है बे निरोग बना रहे, स्वस्थ बना रहे और अपन फायदो भी हुए। इनके अलावा किसान भाइयों अपन पशुओं की हारी बीमारी को भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि ये बदलता मौसम में क्या है पशुओं ने कई तरीके की बीमारियां है बे घेर ले और पशु जो है बाकी चपेट में आ जाए। तो अब जी हम बात करें तो ये मौके क्या है आपने जो का पशु है बिना जी आप संतुलित आहार दिए है तो ज्यादा कोई बीमारी कौन लागे नहीं, लेकिन फिर भी अगर लाग भी जाए तो आपना जो नजदीकी डॉक्टर जी है बांसु संपर्क करके दवा दारू है वह आपने करवानी चाहिए है, और पशु ने बुखार है या फिर कोई और कारण है तो बिंगो भी आपने इलाज को है वो करवाना जरूरी है सा। इनके अलावा पशुओं ने ताजो पानी पियानो जरूरी है और टेम पर पानी पियानो जरूरी है, क्योंकि कई बार यहाँ हो जाएगा आप पशु ने एक ही बार पानी पियावा तो अपने दोनों टेम पानी जो है पशु ने ताजो पियानो चाहिए है, और साफ सुथरो पानी जो है वो अपने पशुओं ने देना चाहिए है। और जठा अपना पशु बंदड़ा है भट्ठा अपने साफ सफाई को पूरा ध्यान रखना है, चिंचड़ है, गोल्ड है, मच्छर है, मक्खी है, एक की भीतरिया जगह कीटाणु है विषाणु जगह है बे नहीं होना चाहिए है। अंगी वजह से भी पशुओं ने कई बीमारियां लाग जाए, और जगह दुधारू पशु है अगर बांगा चिंचड़ या गोल्ड लाग रहे है तो दुधारू पशु जगह है बे आपको दूध भी घटा दे, तो अंग पूरा जाबतो करना है पशुओं ने आंसू बचा के रखना है ऐसा। अपने खेत कैरी का काम धंधा की और भी संभालना ऐसा। अब हूँ चलूँ, राम राम सा, राम राम।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलियान, हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त दिन के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मूज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके तहत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत में लिवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क की तीसरी वर्षगांठ पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जेनेटिक बनावट, पेट के आसपास चर्बी की अधिक समस्या और भारतीयों की खास शारीरिक बनावट के कारण लोगों में मधुमेह, फैटी लिवर और हृदय रोग का खतरा ज्यादा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक तरक्की के साथ बड़े पैमाने पर जन जागरूकता और व्यवहार में बदलाव से इस चुनौती से निपटा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई की मृत्यु हो गई है। वे लंबे समय से बीमार थीं और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तीजन बाई ने महाभारत की कहानियों को अपनी सशक्त आवाज, रौबदार व्यक्तित्व तथा अद्भुत शैली की प्रस्तुति के साथ मंच पर जीवंत बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन को कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। इधर राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट में उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि भारतीय लोक कला में उनके उत्कृष्ट योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। केंद्र सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटपूतली बहरोड़ के दौरे पर हैं। श्री यादव जिले की मुंडावर पंचायत समिति सहित विभिन्न स्थानों पर विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इसी कड़ी में उन्होंने जाट बहरोड़ गांव में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा उनका रक्तदान शिविर के साथ ही जैतपुर में श्री श्याम मंदिर में नवनिर्मित श्याम कुंड उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। करौली में पांचना बांध के पानी को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने कल संबंधित अधिकारियों के साथ बांध का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जल संसाधन विभाग की टीम ने नहरी तंत्र का तकनीकी परीक्षण भी किया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में पांचना बांध के पानी के वितरण को लेकर संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनी थी। प्रदेश के कई जिलों में मॉनसून की बारिश का दौर बना हुआ है। सवाई माधोपुर में सुबह तेज बरसात हुई। हनुमानगढ़ में जिला मुख्यालय सहित भादरा, संगरिया और पल्लू क्षेत्र में भी हल्की बारिश के समाचार हैं। जैसलमेर में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। इससे पहले कल सीकर, झालावाड़, उदयपुर, प्रतापगढ़ और अन्य जिलों में भी अच्छी बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक प्रदेश में मानसून गतिविधियां जारी रहने और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं अति भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस

नमस्कार बहनों, मैं आपकी सखी सुनीता शर्मा एक बार फिर आपके पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत में आपका स्वागत है। बहनों, आज हम चर्चा करेंगे वन है तभी जीवन है, आयुष्मान भारत योजना, मोबाइल चार्जिंग के समय रखे सावधानी और चॉकलेट से बनी हेल्दी डिशेज। जिंदगी की तपिश में जो छांव बन के चलती हैं, जिंदगी की तपिश में जो छांव बन के चलती है, वो औरत है जो हर किरदार में बखूबी ढलती है। कभी ममता, कभी शक्ति, कभी उम्मीद का दरिया, उसी के दम से ही तो ये दुनिया संवरती है। इस खूबसूरत शायरी के साथ आज के कार्यक्रम की हम करते हैं शुरुआत। पेड़ की महिमा सदैव निराली, आती है इनसे खुशहाली। पेड़ की महिमा सदैव निराली, आती है इनसे खुशहाली। पेड़ हमें देते खुशहाली, फिर पृथ्वी क्यों इनसे खाली। वृक्ष प्रदूषण दूर भगाते, धरती को ये स्वर्ग बनाते। वृक्ष दिखाते ऊपर उठना, फल से लदकर नीचे झुकना। पेड़ देश का अनमोल खजाना, इसे हमें हर रोज है बढ़ाना। बिल्कुल बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। एक पुरानी और बेहद सच्ची कहावत है, वन है तो कल है और वन है तभी जीवन है। बहनों जरा सोचिए, जब हम सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेते हैं तो वह सांस हमें कहाँ से मिलती है। जब तपती गर्मी में हमें ठंडी छांव की तलाश होती है तो वह छांव हमें कौन देता है। तो जवाब बहुत सीधा है, हमारी वन, हमारे जंगल। वन है तो जीवन है, यह मात्र एक नारा नहीं है बल्कि परम सत्य है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना वनों के बिना अधूरी है। बहनों आदिकाल से ही वनों और मानव का गहरा संबंध रहा है। वन जो है प्रकृति का अनमोल उपहार है जो हमारी धरती को हरा भरा और जीवंत बनाए रखता है। यदि आज पृथ्वी पर जीवन मुस्कुरा रहा है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय उन जंगलों और वनों को ही जाता है। बहनों वन केवल पेड़ों का समूह नहीं है, ये इस धरती के फेफड़े हैं। जिस तरह हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए फेफड़ों की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारी पृथ्वी को भी जीवित रखने के लिए वनों की ज़रूरत है। और ये हमें केवल जीवनदायिनी ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि पर्यावरण में फैली जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड को भी खुद में समेट लेते हैं। पेड़ पौधे हैं धरती का सिंगार, इनके बिना जीवन है बेकार।

बहनों, गीत से पहले हम बात कर रहे थे, वन है तभी जीवन है, पेड़ पौधे हैं धरती का श्रृंगार, इनके बिना जीवन है बेकार। बिल्कुल बहनों, वन हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। इनके महत्व को हम समझ सकते हैं। वन जो है बादलों को आकर्षित कर वर्षा कराने में सहायक होते हैं, पेड़ों की जड़ें भूमिगत स्तर को बनाए रखती हैं और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में भी मदद करती हैं। वनों से हमें इमारती लकड़ी, ईंधन, फूल, फल आदि और कागज़ बनाने के लिए कच्चा माल भी मिलता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक की अधिकांश औषधियाँ और जड़ी

या भी हमें वनों से ही प्राप्त होती हैं। बहनों, वन जो है अनगिनत पशु पक्षियों, कीट पतंगों और वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास है। यदि वन नष्ट होंगे तो ये भी बेघर हो जाएंगे, जिससे हमारी खाद्य श्रृंखला भी बिगड़ जाएगी। आज विज्ञान ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन वह कृत्रिम रूप से प्रकृति का संतुलन नहीं बना सकता। वन हमारी जल चक्र को नियंत्रित करते हैं, पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को बांध कर रखते हैं, जिससे बाढ़ जैसी आपदाएं रुकती हैं और भूमि का कटाव थमता है। अगर आज नदियां बह रही हैं और बारिश समय पर हो रही है, तो इसका भी बहुत बड़ा श्रेय उन जंगलों को ही जाता है। बहनों, आज आधुनिकता, शहरीकरण और औद्योगिकरण की अंधी दौड़ में इंसान ने वनों की अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी है। कंक्रीट के जंगल बनाने के चक्कर में हरे भरे जंगलों को साफ किया जा रहा है, और इसका जो परिणाम है वो हमारे सामने है। ग्लोबिंग वार्मिंग का बढ़ना, ऋतु चक्र का असंतुलित होना, और वही सूखा जो कभी बाढ़ आती थी वही अब सूखा हो रहा है। प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। याद रखें, जब तक धरती पर पेड़ सुरक्षित है, तब तक ही हमारा अस्तित्व सुरक्षित है। प्रकृति से छेड़छाड़ करके मानव कभी भी सुखी नहीं रह सकता। बहनों, यदि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देना है, तो वनों का संरक्षण बेहद जरूरी है। तो इसके लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना है। एक व्यक्ति एक पेड़ के संकल्प को जीवन में उतारना होगा। विशेष अवसरों पर पेड़ लगाने की आदत डालनी होगी। वनों की कटाई पर रोक लगानी होगी। सरकार द्वारा वनों की कटाई के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने होंगे, और समाज के हर वर्ग को, विशेषकर युवाओं और बच्चों को, पर्यावरण और वनों के महत्व के प्रति जागरूक करना होगा। हमें सिर्फ पौधों को लगाना ही नहीं है, बल्कि उनके बड़े होने तक उनकी देखभाल भी करनी है। इसलिए हमें यह मानना है कि वन और मानव जीवन एक दूसरे के पूरक है। वनों का विनाश सीधे तौर पर मानव सभ्यता का विनाश है। और हमें यह समझना होगा कि यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो शुद्ध हवा, पानी और भोजन का मिलना भी असंभव हो जाएगा। तो आइए हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करें कि हम न केवल वनों की रक्षा करेंगे, बल्कि धरती को फिर से हरा भरा बनाने में अपना योगदान देंगे। बहनों, यदि हमें मानव सभ्यता को बचाना है, इस नीली धरती को खूबसूरत बनाए रखना है, तो वनों को बचाना ही होगा। और याद रखिए, वन सुरक्षित है तो हमारा आज और कल सुरक्षित है, क्योंकि वन है तभी जीवन है। धरती पर यदि जीवन बचाना है, तो सबसे पहले वनों को बचाना है।

बहनों, किसी ने सच ही कहा है, पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ शरीर को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन जब घर में कोई बीमारी दस्तक देती है ना, तो केवल शारीरिक कष्ट होता है, बल्कि इलाज के खर्च से पूरे परिवार की आर्थिक कमर भी टूट जाती है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए तो गंभीर बीमारी किसी आपदा से कम नहीं होती। और इसी चिंता को दूर करने और हर नागरिक तक बेहद स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने एक ऐसी ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो बहनों, आज हम बात करेंगे कि यह योजना देश के करोड़ों परिवारों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। बहनों, आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, और इसका मुख्य उद्देश्य है देश के गरीब और वंचित परिवारों को महंगे इलाज के खर्च से मुक्ति दिलाना। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है। और बहनों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए अस्पताल में 1 रुपया भी नकद देने की जरूरत नहीं होती। यह पूरी तरह से पेपरलेस और कैशलेस है। तो बहनों, आइए जानते हैं कि यह योजना किस तरह आम जनमानस को राहत पहुंचा रही है। इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने से 3

दिन पहले की दवाइयाँ, जांचें और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का अनुवर्ती खर्च शामिल है। गंभीर बीमारियों का इलाज जैसे कि कैंसर है, दिल की बीमारी, किडनी की बीमारी और घुटने के प्रत्यारोपण जैसे महंगे और गंभीर ऑपरेशनों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। बहनों, पता है इस योजना की एक अद्भुत विशेषता क्या है? वो है पोर्टबिलिटी, यानी कि देश भर में यह मान्य है। यदि कोई लाभार्थी अपने गृह राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य में है तो भी वह वहां से सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज करा सकता है। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत लाभार्थियों को एक डिजिटल आयुष्मान कार्ड दिया जाता है, जिसे अस्पताल में दिखाते ही इलाज की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है। बहनों, आयुष्मान भारत योजना सिर्फ अस्पताल में मुफ्त इलाज तक ही सीमित नहीं है, इसका एक दूसरा मजबूत स्तंभ है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिन्हें पहले स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र या हेल्थ एंड वेलनेस कॉन्ट्रेस कहा जा सकता है। गांव-गांव और कस्बों में खुले में ये केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं जैसी कि गर्भावस्था के दौरान देखभाल करना, शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और मधुमेह व उच्च रक्तचाप जैसी सामान्य बीमारियों की मुफ्त जांच और दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। इससे बीमारी की पहचान शुरुआती दौर में ही हो जाती है। अगर हम संक्षेप में कहें तो आयुष्मान भारत योजना ने देश के गरीब और बेसहारा नागरिक को सम्मान से जीने और सही समय पर सही इलाज पाने का अधिकार दिया है। आज इस योजना की बदौलत करोड़ों लोग महंगे अस्पतालों में भी बिना किसी आर्थिक या मानसिक तनाव के अपना इलाज करा पा रहे हैं। इससे देश के स्वास्थ्य ढांचे को भी मजबूत किया है और साथ ही आम आदमी के मन में यह विश्वास भी जगाया है कि बीमारी अब लाचारी नहीं बनेगी। तो आइए बहनों, हम सब मिलकर इस कल्याणकारी योजना के प्रति जागरूकता फैलाएं, ताकि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी इसका पूरा लाभ मिल सके।

बहनों, बात करते हैं मोबाइल चार्जिंग के समय रखने वाली सावधानी की। मोबाइल फ़ोन जो है वो आज हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम इसका निरंतर उपयोग करते हैं, लेकिन इस उपकरण को ऊर्जा देने वाली प्रक्रिया यानी कि मोबाइल चार्जिंग के दौरान अक्सर हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो न केवल हमारे फ़ोन को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि कई बार तो बड़ी दुर्घटनाओं का कारण भी बन जाती है। तो बात करते हैं मोबाइल चार्जिंग के समय रखने योग्य कुछ सावधानियों की। तो पहला है कि मूल चार्जर और केबल का ही हमें उपयोग करना चाहिए। अक्सर होता ये है कि बहनों, लोग अपना चार्जर खराब होने या गुम होने पर बाज़ार से कोई भी सस्ता या स्थानीय चार्जर खरीद लेते हैं। यह मोबाइल के लिए सबसे घातक साबित हो सकता है। हमेशा मोबाइल के साथ आए मूल चार्जर और डेटा केबल का ही उपयोग करें, या फिर किसी अच्छी प्रमाणिक कंपनी का चार्जर भी ले सकते हैं। नकली चार्जर में वोल्टेज नियंत्रण की व्यवस्था नहीं होती, जिससे फ़ोन ब्लास्ट होने या बैटरी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। एक और बात, फ़ोन चार्ज करते समय इसका उपयोग बिल्कुल ना करें। यह सबसे आम और खतरनाक आदत है। लोग फ़ोन को चार्जिंग पर लगा देते हैं और उससे गेम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं या फिर फ़ोन पे बात करते हैं। तो चार्जिंग के दौरान फ़ोन के भीतर जो है वो रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिससे गर्मी पैदा होती है। अगर आप उस समय भारी ऐप या चलाएंगे या फ़ोन का यूज कर रहे हैं, तो फ़ोन का तापमान अत्यधिक बढ़ जाएगा, जिससे बैटरी के फटने या मदरबोर्ड जलने का भी जोखिम रहता है। फ़ोन को कई लोग होता है कि फ़ोन को रात भर चार्ज में लगा देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना। फ़ोन को रात भर चार्जिंग में लगाकर नहीं रखना। आजकल के स्मार्टफोन में आधे ऑटो कट होती है, उसकी सुविधा होती है, फिर भी फ़ोन को पूरी रात चार्जिंग पर छोड़ना सही नहीं है। जब बैटरी 100% हो जाती है, तो लगातार बिजली का प्रवाह बैटरी पर दबाव बनाता है। इससे बैटरी की लाइफ कम हो जाती है और वह जल्दी ही फूलने लगती है। तो कोशिश करें कि बैटरी को 20% से 80% के बीच ही रखें। फ़ोन का जो पीछे का कवर होता है, वह हटा दें। स्मार्टफोन चार्ज होते समय थोड़े गर्म हो जाते हैं। यदि फ़ोन पर मोटा प्लास्टिक, लेदर या रबड़ का जो बैक कवर है वो लगा हो, तो वह फ़ोन के भीतर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता। इस वजह से फ़ोन का तापमान भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें करना क्या है कि चार्जिंग के समय जो पीछे का कवर होता है उसको हटाना।

हैं। एक समझदारी भरा कदम है कि कभी भी फ़ोन को बिस्तर, गद्दे, सोफे या तकिए के नीचे रखकर चार्ज में ना लगाएं। ये कपड़े और फोम जो उष्मा के कुचालक होते हैं, जो फ़ोन की गर्मी को सोख कर उसे और अधिक गर्म कर देते हैं। तो हमें फ़ोन को कभी भी, कई लोगों को हम देखते हैं कि सोफ़े पे बैठे हैं और वहीं फ़ोन को चार्ज लगा दिया, या किसी कपड़े पे या बेड पे लगा दिया, तो हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि इससे आग लगने या दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। फ़ोन को किसी समतल और ठंडी सतह जैसी लकड़ी की मेज या फर्श पर रखकर ही चार्ज करें। चार्ज करते समय फ़ोन को नमी और पानी से भी दूर रखें। बाथरूम या रसोई जैसी जगहों पर जहां पानी का उपयोग अधिक होता है, फ़ोन चार्ज करने से हमें बचना चाहिए। गीले हाथों से चार्जर को छूने से भी बिजली का झटका लग सकता है, और साथ ही नमी के कारण चार्जिंग पोर्ट में भी शॉर्ट सर्किट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो बहनों, तकनीक हमारी सुविधा के लिए हैं, बशर्ते हमें इसका उपयोग या इस्तेमाल जिम्मेदारी और समझदारी से करना है। मोबाइल चार्जिंग से जुड़ी ये सावधानियाँ बेहद छोटी और सामान्य लगती हैं, लेकिन इनकी अनदेखी करने पर जान मान का बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सजग रहें, सुरक्षित रहें और अपने स्मार्टफोन की उम्र के साथ साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखें। बिना चार्जिंग के तो फ़ोन भी ईंट सा लगता है, तो बैटरी के डर का एक ही इलाज हमारा चार्जर हो सबसे लाजवाब।

दिल के जज्बातों को जरा सा मीठा कर लेते हैं, दिल के जज्बातों को जरा सा मीठा कर लेते हैं, चलो आज खामोशी को भी एक नया मोड़ देते हैं। यूं तो कड़वाहट बहुत है इस मतलबी दुनिया में, यूं तो कड़वाहट बहुत है इस मतलबी दुनिया में, लाओ एक टुकड़ा चॉकलेट का खाकर दुनिया दूरियां कम कर लेते हैं। बिल्कुल बहनों, जब भी नाम लिया जाए चॉकलेट का, तो बच्चे तो क्या बड़ों के चेहरे पे भी एक मीठी सी मुस्कान तैर जाती है, लेकिन अक्सर हमारे मन में एक दुविधा होती है, स्वाद चुने या सेहत। हम सोचते हैं कि चॉकलेट खाना यानी कि सेहत से समझौता करना, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप चॉकलेट का भरपूर मज़ा भी ले सकते हैं और अपनी सेहत को भी दुरुस्त रख सकते हैं। जी हाँ बहनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही लाजवाब, स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर डिश की, जिसे आप ये घर पर बेहद आसानी से बना सकते हैं। जो हमारी आज की रेसिपी है, डार्क चॉकलेट और ओट्स के माफिन्स। तो बहनों, सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि यह डिश हेल्दी क्यों है। तो इसमें एक सामान्य मिल्क चॉकलेट की जगह डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं। जो डार्क चॉकलेट होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो हमारे दिल की सेहत के लिए भी बेहतरीन है और हमारे मूड को भी तरोताज़ा रखती है। दूसरा है ओट्स, जो कि फाइबर का बड़ा ही पावर हाउस होता है। यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत रखता है और लंबे समय तक हमें ऊर्जा देता है। तो इसको बनाने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले एक बर्तन में ओट्स का आटा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर को अच्छी तरह से मिलाना है, और एक दूसरे बर्तन में दूध, घी और गुड़ के पाउडर को जब तक फेंटे, जब तक कि गुड़ पूरी तरह से घुल ना जाए। और अब इन दोनों मिश्रणों को आपस में मिला लेंगे और ऊपर से डार्क चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे। इस गाढ़े घोल को माफिन गोल्स यानी कि सांचों में डालेंगे और प्री हीटेड ओवन या कढ़ाई में 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। बस तैयार है आपका गर्मा गर्म, खुशबूदार और सेहतमंद डार्क चॉकलेट ओट्स माफिन्स।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बहनों, हम बात कर रहे थे चॉकलेट से बनी हेल्दी डिशेस की, अब बात करते हैं खजूर और डार्क चॉकलेट एनर्जी बार की। बहनों, मीठा खाने की इच्छा को पूरा करने और वर्कआउट से पहले एनर्जी पाने के लिए यह उत्तम है। इसे बनाने के लिए खजूर, बादाम, अखरोट और कोको पाउडर को मिक्सर में पीस लेंगे। इसे एक ट्रे में जमाकर डार्क चॉकलेट की पतली परत लगाएंगे और छोटे

के टुकड़ों में काट लेंगे। इसके फायदे ये होंगे कि इसमें चीनी ना ही होती है, तो इसीलिए खजूर और नट से प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है। अब करते हैं बात चॉकलेट योगर्ट फारके की। यह एक रिफ्रेशिंग और क्रीमी डेजर्ट है जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे बनाने के लिए एक गिलास में ग्रीक योगर्ट, दही को थोड़े कोको पाउडर और ओट्स के साथ मिलाएंगे और ऊपर से इसमें कटे हुए केले, स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरी को डाल देंगे। और इसके फायदे यह होते हैं कि यह कैल्शियम, विटामिन और बायोटिक्स का अच्छा स्रोत है। हेल्दी हॉट चॉकलेट, इसे बनाने के लिए ठंड के मौसम या बारिश में पीने के लिए एक बेहतरीन हेल्दी ड्रिंक है। इसे बनाने के लिए कम वसा वाले दूध या बादाम के दूध को गर्म करेंगे। इसमें असली डार्क चॉकलेट के कुछ टुकड़े या शुद्ध कोको पाउडर और चुटकी भर दालचीनी बनाएंगे और यह मूड को भी बेहतर बनाता है और एंटीऑक्सीडेंट को भी देता है।

अपने के लिए हम चॉकलेट के लिए यह बोल सकते हैं, मेरे दिल की धड़कन हो तुम, पर्क के चॉकलेट का रैपर हो तुम, रहना हमेशा यूं ही मेरे साथ क्योंकि मेरी फेवरेट चॉकलेट हो तुम। तो चलते चलते सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दीपक की लो से तो सिर्फ घर रोशन होता है, दीपक की लो से तो सिर्फ घर रोशन होता है, जब महिलाएं जागती हैं तो पूरा समाज रोशन होता है। इसी के साथ बहनों आप अपनी सखी सुनीता को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल

0: मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि VBG रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानंद मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
4: The significance is immense.
3: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है।

0: एल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
2: दीने दीने
3: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
4: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
5: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया सेना ले ले चला। सावन में
3: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेंद्र का और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी।

0: अमरीका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए, सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

लीजिए सुनिए मृत्युदाता फिल्म का ये गीत आवाज़ें विनोद राठौड़, अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की है। गीत की रचना समीर की और संगीत आनंद मिलन का।

अलका याग्निक और कुमार सानू को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था रंग। गीत के बोल समीर के थे और संगीत नदीम शवन का।

मोहम्मद अजीज़ और अलका याग्निक को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था अपराधी। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: जाने मन चुपके चुपके।
1: लीजिए सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक को, फिल्म का नाम है मुस्कान। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत निखिल विनय का।

मोहम्मद अजीज और शोभना जोशी को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था हम। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजे हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस का प्रसारण सुनेंगे।

आदाब अर्ज है, ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस का अब आगाज होता है।

आइए नजर डालते हैं आज की मजलिस में नश्र होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से चंद ही लम्हों के बाद यानी 3:05 पर खबरें नश्र की जाएंगी। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद आप सुन सकेंगे 3:15 पर। 3:30 पर हम आपको सुनवाएंगे एक ड्रामा जिसका उन्वान है फनकार। 4 बजे से आप फिल्मी मौसीकी का लुत्फ ले सकेंगे।

ये प्रोग्राम शाम के 4:50 तक जारी रहेगा। शाम 4:50 पर खबरें नशर होंगी और 5 बजे आज की दूसरी मजलिस ख़त्म हो जाएगी। ये थी एक नज़र इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया के दौरे पर जा रहे हैं ताकि क्लीदी साझेदारी को मुस्तहकम बनाया जा सके और उभरते हुए शोबों में इश्तराक को वसत दी जा सके। सरकार ने आबनाए हुरमुस के रास्ते रकीक कुदरती गैस LNG की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। मरकज ने मेटा को हुक्म दिया है कि इंस्टाग्राम से बच्चों के इस्तेमाल से मुतालिक इश्तहार हटाए जाएं। सरकार ने इस सिलसिले में 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ की नामवर पंडवानी गुलुकारा तीजनबाई का इंतकाल हो गया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने उनकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया है। और ख्वातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया का दौरा कल से शुरू हो रहा है और इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को तकवीत मिलेगी और इश्तराक के नए रास्ते भी खुलेंगे। आज जकार्ता में आकाशवाणी के साथ इंटरव्यू में इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे और तावुन के कई नए शोबे खुलने से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और दो बड़े मुल्कों के दरमियान इकतसादी रबते और ज़्यादा मजबूत होंगे। जामे क्लीदी साझेदारी के बारे में सफीर मसूफ ने कहा कि इस शराकत दारी के कई सुतून हैं, इनमें से एक दिफा और सिक्योरिटी है। इसके अलावा ताल्लुकात में और ज्यादा इक्तिसादी सरगर्मियां भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 8 जुलाई से 10 जुलाई तक के ऑस्ट्रेलिया के मुजव्वजा दौरे से कबल भारत को ऑस्ट्रेलिया का एक अहम इक्तिसादी साझेदार करार दिया है। एक बयान में ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम के दफ्तर ने कहा कि दुनिया की चौथी बड़ी और तेजी से तरक्की पसीर मईशत होने के नाते भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए नहायत अहमियत इकतसादी शराकतदार है। जनाब एंथनी अल्बानीज ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर मबनी हैं जो मजबूत इकतसादी और सकाफती रवाबित की बुनियादों पर कायम हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तिजारत, दिफा, सलामती और टेक्नोलॉजी के शोबों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तावुन दोनों ममालिक के लिए मुस्बत और बाहमी फायदे का बाइस बन रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर SJ शंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरेन, कुवैत और ओमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वजारत खारजा ने कहा कि इस दौरे का मकसद

नहीं कोई शेर है कहीं, शायर कहे शायरी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से

अब्दुल्ला फिल्म का नगमा भी आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर को सुनिए, फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये नगमा अभी अपने डार्लिंग डार्लिंग फिल्म से सुना। इसके साथ ही आज का फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम मेरी पसंद अब ख़त्म होता है। आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं। फ्रीक्वेंसी है मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप उर्दू सर्विस सुन सकते हैं और DD फ्री डिश पर भी उर्दू सर्विस की नशरियात दस्तियाब हैं। लीजिए अब सुनिए जनाब कश्मीरी लाल जाकिर का तहरीर करदा एक मजाहिया ड्रामा, उनवान है फनकार।

0: आज की कोई नई बात?
1: कोई नहीं सरकार,
0: तुम कभी कोई बात नहीं सुनाती।
1: मैं तो बस एक ही खबर सुनाऊंगी शहजादी।
0: कौन सी? समझी, तुम बहुत गुस्ताख होती जा रही हो।
1: सरकार, मैं एक ताजा खबर लाई हूँ।
0: कहो।
1: शहंशाह के हुजूर में कल मुल्क के मूसीकारों का एक इज्तिमा हो रहा है।
0: अच्छा, हमें तो मालूम नहीं।
1: आपकी अफसरदा तबीयत बहल जाएगी।
0: सुना है
1: जहाँ पनाह ने ये सब आप ही के लिए किया है।

0: गुलरुबा, हम तखलिए में इसके आतिशी नगमे से लुत्फंदोज होना चाहते हैं।
1: बहुत अच्छा सरकार, कनीज इसे आज शाम ही आपकी खिदमत में हाजिर करेगी।

0: फनकार, हम तुम्हारे फन से बहुत मुतासिर हुए। कहो तुम्हें क्या इनाम दिया जाए?
1: मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, फन अपना इनाम आप ही है।
0: लेकिन हम तुम्हें इनाम देना

0: चाहते हैं
1: तो लोगों को फन की कदर करना सिखा दीजिए।
0: तुम जीत गए फनकार।
1: तो अब मुझे इजाजत है।
0: गुलरुबा, फराज को इनकी कयामगाह तक पहुंचा दो।
2: जो हुक्म।
0: फनकार, कल भी आओगे ना?
1: अगर हुजूर याद फरमाएंगी तो जरूर हाजिर होऊंगा।

0: शहजादी आज तुमसे बहुत खफा है।
1: मुझसे कौन सी खता हुई?
0: जिसके लिए बड़ी से बड़ी सजा भी कम है।
1: तुम्हारा मतलब?
0: शहजादी खुद ही तुमसे कह देंगी। एलो, वो इधर ही तशरीफ ला रही है। कनी ज्यादा बजा लाती है। फराज
1: जी,
0: आज तुम आदाब भी नहीं बजा लाते, इस तरह गुमसुम क्यों खड़े हो?
1: आदाब बजा लाता हूं।
0: लेकिन तुम आज यूं खोए खोए से क्यों नजर आते हो?
1: नहीं सरकार, मैं ठीक हूं।
0: क्या वतन की याद सता रही है?
1: जी नहीं।
0: तुम्हारा वतन भी तो जन्नत नजीर है, इससे दूर रहने का गम क्यों ना हो?
1: मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सजा तजवीज करने से पहले मुझे मेरी खता बता दी जाए।
0: कैसी सजा? कौन सी खता? मैं कुछ नहीं समझी तुम्हारा क्या मतलब है फराज। इस दफा आप इन्हें माफ कर दी, आइंदा ऐसे इनसे कोई खता ना होगी।
2: खामोश।
0: समझी? तो इस गुस्ताख ने तुम्हें परेशान किया है, लेकिन तुम खामोश क्यों हो
1: जी?
0: क्या सोच रहे हो तुम?
1: कुछ नहीं सरकार।
0: न जाने ये फनकार हर वक्त सोचते क्यों रहते हैं।
1: उनकी मजबूरी है।
0: छोड़ो इस किस्से को, देखते नहीं ये गुंचे नींद भरी आंखों से एक मुद्दत से किसी का इंतजार कर रहे हैं। आकाश के झरोखे से माहे कामिल यूं उभर रहा है जैसे कश्मीर की किसी झील में कमल का बड़ा सा फूल खिल रहा हो। कितना खूबसूरत है ये फूल, लेकिन कितनी बोझल है ये फजा। इसकी थकन और घुटन को नगमे के सैलाब में बहा दो फराज, ताकि ये फजा बारिश से धुली हुई कलियों की तरह निखर जाए। हाँ, तो छेड़ो जरा तारों को।

0: आगे बंद नहीं बांधे जाते।
1: लेकिन इसमें से नहरें निकालकर उसकी शख्सियत को जख्मी किया जा सकता है
0: और वो दोबारा उसी में शामिल होकर समंदर की तरफ बढ़ने लगती हैं, जहां उनका बहुत बड़ा मरकज है, जहां पहुंचकर वो एक लंबे सफर पर रवाना हो जाती हैं, एक ऐसा सफर जो मंजिल से बेरियास है।
1: जानते हो मैं कौन हूँ?
0: आप हैं शहंशाह की बेटी शहजादी लाला रोह।
1: और तुम?
0: मैं गरीब फनकार।
1: और फिर भी तुम समझते हो कि जिंदगी गैर मुनकसिम है?
0: जी।
1: कैसे?
0: ये सब जिंदगी का जाहिरी खोल है, इसके अंदर एक यकसानियत है।
1: तुम्हारे ख्यालात भी तुम्हारे नगमे की तरह जज्बात में आग लगाते हैं।
0: ये तो कोई तारीफ ना हुई शहजादी।
1: बर्फ के सीने में चिंगारी सुलगाने वाला ही उसके लिए तमाम तारीफ का मुस्तहिक है। तुम नहीं जानते मरमरी महलात का ये माहौल कितना सर्द और बेहिस होता है। जैसे इसमें जीते जागते इंसान नहीं बसते, बर्फ के तोदे चट्टानों की तरह गड़े हों।
0: बर्फीली चोटियों का रहने वाला तो मैं हूं, जहां इंसान किसी दूसरे इंसान के कुर्बत को भी तरसता है, जहां बाहर भी आती है तो झिझकती हुई शर्माती हुई, जैसे उस वादी में कदम रखते हुए लरस रही हो। यहां तो हर घड़ी बाहर रक्स फरमा नजर आती है। आह, कितना पुरकैफ है मरमरी महलात का ये चमकना, कितना पुरकैफ है ये माहौल।
1: काश तुम महसूस कर सकती, लेकिन तुम नहीं समझोगे।
0: समझता हूँ शहजादी।
1: तुम समझते हो सच, और फिर भी तुम्हारा रवैया इतना सर्द है।
0: मैं मजबूर हूँ शहजादी, हृदय उबूर करने के नाते।
1: फराज, मेरे अच्छे फनकार।
0: डालर हो फिरदौस का एक महकता हुआ फूल।
2: सरकार, दारोगा महलात आ रहा है, फराज को जाने की इजाजत दीजिए।
1: अच्छा, तो इन्हें पिछले दरवाजे से ले जाओ। खुदा हाफिज फराज।
0: खुदा हाफिज ललरू।

0: तार टूट गया।
1: मुझे अफसोस है
0: शहजादी वाला तबार, शिकस्ता तार सिर्फ अफसोस से नहीं जोड़ा करते।
1: लेकिन फनकार तार टूट क्यों जाते हैं?
0: तार ज्यादा दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते शहजादी।
1: दबाव के बगैर तारों से नगमा भी तो नहीं फूटता।
0: लेकिन शहजादी दबाव, हाँ एक हद तक दबाव।
1: दबाव और हद,
0: हदें उबूर करने के नतायज अच्छे नहीं होते।
1: लेकिन गैर मामूली जरूर होते हैं। उबूर करोगे हदें?
0: कौन सी हदें?
1: वो हदें जो जिंदगी को मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
0: लेकिन जिंदगी तो गैर मुनकसिम है, ये एक ऐसा दरिया है जिसके

एक फनकार के लिए उसके ख्याली दुनिया ही सब कुछ है। जीते जागते इंसानों की दुनिया उसे रास नहीं आ सकती। काश काश मैं यहां ना आता। लाला रोह, लाला रोह, जैसे उसमें दुनिया भर की मिठास समोती हो। कहां समा गई है मेरे दिल में एक शहंशाह की लड़की, जो मेरे जैसे लाखों इंसानों को गुलाम बनाकर अपनी खिदमत पर मामूर कर सकती है। वो एक शहजादी, मैं खरीफ फनकार, कहां वो कहां मैं। और अब मुझे ये पैगाम लेकर जाना है कि लाला रुख से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैंने उसे तखय्युल के ताजमहल में बिठाकर उसकी परस्तिश की है, उसे अपना खुदा समझा है। मुझे अपने गीतों के फूल अब किसी के कदमों में बिछाने होंगे ताकि वो उन्हें कुचल डाले। शहजादा परवेज, जिसने हमेशा मेरे फन की तासीम की है, आज मेरा रक्त

0: और मेरी बेबस और बेसहारा सिंध की टपटपाई नजरों से उसकी तरफ देख रही है, और वो एक औकाब की तरह मेरे मुस्तकबिल पर छपटने वाला है। मुझे लाला रुख के पास न जाना चाहिए, उसको दिल से निकाल देना चाहिए, लेकिन लेकिन फूल से खुशबू कैसे रहता होगी, चांद से चांदनी कैसे अलग हो सकती है, तारों से नूर कौन जुदा कर सकता है। हो सकता है उसे मेरा ख्याल भी ना आए, हो सकता है दुनिया में कौन सी बात मुमकिन नहीं।
1: क्या बात है फनकार, आज तुम्हारा सांस खामोश क्यों है? आज तुम्हारे चेहरे पर अफसुर्दगी क्यों छाई है?
0: नहीं तो
1: मालूम होता है तुमने कभी मोहब्बत नहीं की।
0: की है लेकिन
1: रुक क्यों गए?
0: लेकिन कामयाब नहीं हुआ,
1: इसीलिए परेशान हूँ। ये सुनना बर्दाश्त नहीं कर सके कि लाला रुख शहजादे परवेज से ब्याही जा रही है। तुम्हें दुख हो रहा है कि शहजादी को तुम जैसे कंगले के हाथ नहीं सौंपा गया। तुम कितने खुदगरज हो, तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी का ख्याल है, लाला रुख की भलाई का नहीं।
0: अगर एक बुत तराश का अपने बुत के तोड़े जाने पर चीखना खुदगरजी है तो मैं खुदगरज हूँ कुलरबा।
1: खैर, ये बातें तुम शहजादी से खुद ही कर लेना, उसने तुम्हें बुलवा भेजा है।
0: मुझे वहां ले जाकर जलील करना चाहती हो? कुलरबा, अब मैं नहीं जाऊंगा, उसके मुस्तकबिल का फैसला हो चुका। ओह, मुझे अपने तखय्युल पे भी कोई हक नहीं रहा।
1: आज महल का एक एक फूल तुम्हारा इंतजार कर रहा है, रात की हसीन वादी तुम्हारा इंतजार कर रही है, और तुम आज भी नहीं जाओ?
0: हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा किसी को भी इंतजार नहीं, सब अपने हसीन मुस्तकबिल का इंतजार कर रहे हैं।
1: अगर तुम रजामंदी से नहीं जाओगे तो तुम्हें जबरदस्ती ले जाएंगे।
0: गुलाम नहीं, फनकार हूँ जिसके गुरूर के आगे खुदा भी सर झुकाता है।
1: तुम्हारे खुदा ही ने तुम्हें याद किया है, वही सर झुकाए खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
0: खुदा, मेरा खुदा।
1: तो क्या सोचा?
0: कुलरबा, मैं जाऊंगा।
1: आफरी है फनकार।

0: फराज, मेरे अच्छे फनकार, आज तुम्हारी आंखों के कमल मुरझा क्यों रहे हैं?
1: खिले ही कहते शहजादी साहबा।
0: जब पहली बार तुम मुझे मिले थे।
1: नहीं, ये जब भी मुरझाए हुए थे सिर्फ तुम्हारी शबनमी आंखों से इनमें जरा निखार आ गया था।
0: मैं भी कश्मीर जा रही हूँ, शहंशाह आलम ने मुझे इजाजत बख्श दी है। कितना पुरलुत्फ रहेगा ये तवील सफर।
1: और कितना जांकुशल।
0: क्यों?
1: इसलिए कि इसके मंजिल बड़ी भयानक है।
0: मुसाफिर के लिए ये तो जरूरी नहीं कि वो मंजिल पर पहुंचकर ही दम ले, वो रास्ते के किसी हसीन मोड़ पर ठहरकर मंजिल के ख्याल से बेनियाज भी तो हो सकता है।
1: काफिले वाले ऐसे मुसाफिरों का इंतजार नहीं करते।
0: गर्दे राह तो उन्होंने अपने सीने से लगाई है ना।
1: ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात हो। वो मोड़ अब करीब है जहाँ से हमारे रास्ते तकसीम होते हैं।
0: छोड़ो इन तलख बातों को, कोई नगमा सुनाओ।
1: अब इन तारों से नगमा नहीं फूटेगा लाला रुख।
0: फूटेगा फराज।
1: आज मेरा जी सितार बजाने को नहीं चाहता।
0: क्यों?
1: इसका जवाब मेरे पास नहीं।
0: फराज, तुम गुस्ताख हो रहे हो। शहजादी लाला रुख तुम्हें नगमा सुनाने का हुक्म देती है।
1: फराज इस हुक्म की तामील करने से मासूर है।
0: लाला रुख तुमसे सितार बजाने की इल्तिजा करती है।
1: फनकार शिकस्ता तारों को मजरूह करने की कोशिश करेगा।

0: के साथ जाने में कोई इतराज तो नहीं?
1: बेहतर हो अगर मैं तना ही चलता हूँ।
0: नहीं, ये नामुनासिब है और इसमें हमारी तौहीन है।
1: तो मैं आप ही के काफिले के साथ चलूंगा।
0: कल शाम तक खुदा हाफिज। कल रात हम पहले पड़ाव में मिलेंगे। हाँ, हमारे वजीर आजम से बचकर रहना, वो अच्छा आदमी नहीं
1: जी।
0: और गुलरुबा पर एतमाद रखना
1: जी।

0: शहजादी और उसकी कनीजों के खेमों पर कहां पैरा रहे। किसी भी आदमी को उस तरफ न जाने दिया जाए, और अगर कोई बाग के अहाते में दाखिल होने की कोशिश करे तो उसे खत्म कर दिया जाए।
1: बेहतर हुजूर।
0: और फराज मूसी कार पर भी नजर रखी जाए, वो मुझे अच्छा आदमी नहीं मालूम होता।
1: बहुत खूब हुजूर।
0: मुझे किसी ने बताया है कि फराज अक्सर लाला रुख से मिलने जाता है और घंटों आपस में राज और न्याज की बातें होती।
1: सुना तो मैंने भी है, लेकिन यकीन नहीं आता।
0: आज वो उससे जरूर मिलने जाएगा।
1: जी,
0: उसे जाने से मत रोकना।
1: तो
0: वापसी पर उसे गिरफ्तार कर लेना, और जब तक हम कश्मीर न पहुंच जाएं उसे जेरे हिरासत ही रखना।
1: ऐसा ही होगा हुजूर।
2: हमें अब अपनी राहें बदल लेनी चाहिए लाला रुख।
3: क्यों, तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं?
2: तुम पर तो है, अपनी किस्मत पर नहीं।
3: तुम शायद उकता गए हो।
2: ये क्या कह रही हो शहजादी,
3: वरना तुम मुझसे दूर चले जाने की न सोचते।
2: लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे लाला रुख, कहेंगे शहंशाह की लड़की ने एक भीख मंगे से मोहब्बत की।
3: तो इसमें क्या बुराई है?
2: शाहजहां बना ये हक्स बर्दाश्त न करेंगे।
3: मैं उन्हें छोड़ दूंगी और हम इस सल्तनत की आखिरी हद को भी पार कर जाएंगे।
2: शाही फौजें हर जानिब से हमारा पीछा करेंगी।
3: हमारी मोहब्बत हमें हर वार से बचाएगी, और जब हमारे लिए कोई पनाहगाह न रहेगी तो हम मौत की अथाह गहराइयों में छुप जाएंगे।
2: लाला रुख,
3: फराज, मेरे हसीन फनकार।
2: लेकिन हमें इस तरह न मिलना चाहिए, शहंशाह की बेटी बदनाम हो जाएगी।
3: लावे को बाहर निकलने से रोको तो वो जलजले में तब्दील हो जाता है।
2: सलसला, एक खौफनाक सलसला मेरी जिंदगी के महल को झिंझोड़ रहा है। मेरी जिंदगी की बुनियाद लरस रही है लाला रुख। तुम्हारे मरमरी हाथ उसे लुढ़कने से न बचा सकेंगे।
3: लेकिन वो पीछे भी न हटेंगे, चाहे वो पिस ही क्यों न जाए।
4: शहजादी, रात बहुत जा चुकी है, अब फराज को अपनी कयामगाह तक लौट जाना चाहिए।
3: तुम अब तक जाग रही हो, शायद जलती हो।
4: नहीं सरकार, दुश्मन मौके की ताक में है।
2: हाँ शहजादी, कुलोबा ठीक कहती है, मुझे जाना ही चाहिए।
3: अच्छा, तो मेरी पलकों पर अपनी मोहब्बत के नकूश उभार दो, ताकि इनमें सुहाने ख्वाबों के फूल महकते रहें।
2: लाला रुख,
3: मेरे अच्छे फनकार।
2: शब खैर मलिकाए हुस्न।
3: शब खैर शहरयार फन।

0: क्या हुआ शहजादी?
1: क्यों क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों?
0: फराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। रात जब वो यहाँ से अपने खेमे की तरफ जा रहा था तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया।
1: सच?
0: हाँ शहजादी।
1: अब वो कहाँ है?
0: अब वो फौज की हिरासत में है। वो लोग रात भर उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते रहे लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो आपसे मिलने आया था।
1: गुलरुबा,
0: उसकी खाल तक को उधेड़ दिया गया है लेकिन उसके होठों पर आपका नाम तक नहीं।
1: मैं उससे मिलने जाऊंगी।
0: नहीं, ये मुनासिब नहीं।
1: नहीं गुलरुबा, मुझे उसके पास पहुंचना ही चाहिए। फराज के जिस्म को बर्छियों से नोचा जा रहा है और तू मुझे वहां जाने से रोकती है। नहीं गुलरुबा, मैं जाऊंगी।
0: नहीं,
1: मैं जरूर जाऊंगी।
0: मैं कोशिश करूंगी कि चंद लम्हों के लिए फराज को आपके पास ले आऊं।
1: मैं तेरा एहसान मरने के बाद भी ना भूलूंगी। मुझे तुझ पर भरोसा है मेरी रफीक।
0: कनीज अपना फर्ज पूरा करेगी
1: और जब वो आ जाए तो अपने हाथों से मुझे जहर पिला देना ताकि मैं उसकी निढाल आगोश में दम तोड़
0: सकूं। ये क्या कह रही हैं आप?
1: मेरे फर्ज का यही तकाजा है।
0: ये मुझसे ना हो सकेगा। मैं फराज को भी यहाँ ना आने दूंगी।
1: मोहब्बत के दो मतवालों को नजदीक भी तू ही लाई थी और अब उन्हें एक दूसरे में समा जाने के लिए भी तेरी ही जरूरत है।

0: तुझे ये फर्ज पूरा करना ही चाहिए। जिंदगी के दो मुख्तलिफ धारों को एक दूसरे में मत गम कर दो गुलरुबा, ताकि जिंदगी को गैर मुनकसिम समझने वाला मेरा फनकार उसे टुकड़े टुकड़े होते ना देखे, मेरे फराज के यकीन को चोट ना पहुंचे गुलरुबा।
1: इस वक्त जिंदगी की आखिरी घड़ियों में भी ख्वाब क्यों मेरी आंखों से जुदा नहीं होते?
0: तुम इस वक्त लाला रुख के खेमे में हो फराज।
1: नहीं, ये सब झूठ है। तुम सब शहंशाह की लड़की को बदनाम करते हो, तुम नमक हराम हो। मैं लाला रुख को नहीं जानता
0: फराज। तुम इस वक्त फौजियों की हिरासत में नहीं, मेरे खेमे में हो
1: लाला रुख।
0: फराज, जालिमों ने तुम्हारे जिस्म को बुरी तरह उधेड़ डाला है। तुम सच ही कहते थे।
1: क्या
0: हदे उबूर करने के नताइज अच्छे नहीं होते?
1: तो तुम अपने किए पर पछताओ?
0: नहीं, नहीं मेरी रूह और जिस्म के मालिक, नहीं। मैं इसलिए दुखी हूँ कि मैंने एक अजीम फनकार की जिंदगी को बर्बाद कर डाला।
1: जिंदगी गैर मुनकसिम है लाला रुख, वो कभी बर्बाद नहीं होती। आज तुमने सुर्ख लिबास पहन रखा है लाला रुख।
0: आज मेरी मोहब्बत की तकमील है फराज।
1: सुर्ख रंग मुझे खून की याद दिलाता है शहजादा।
0: और खून ही से मोहब्बत नशोनुमा पाती है।
1: मैंने कहा था ना कि जिंदगी की हदों से तजावुज करना नामुमकिन है।
0: जिंदगी गैर मुनकसिम है, जिंदगी का धारा किसी भी रोग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुलरुबा, गुलरुबा।
2: शहजादी हुजूर।
0: मेरी अच्छी रफीक, लाओ आबे हया।
2: शहजादी साहिबा,
0: ये मेरा हुक्म है।
2: जी, और आपका हुक्म बजा लाना मेरा फर्ज है। लीजिए,
0: मेरी अच्छी गुलरुबा, खुदा हाफिज। अब मुझे अपने महबूब फनकार से कोई जुदा ना कर सकेगा। अब जिंदगी की हदें मेरी मोहब्बत की राह में चट्टाने ना बन सकेंगी।
2: शहजादी साहब ने जहर पी लिया फराश।
1: शहजादी, उसे बाजी ले जाना चाहती हो?
0: नहीं फराज, मैं तो तुम्हारे करीब आ रही हूँ, इतने करीब कि हमारी हस्तियों को कभी कोई जुदा न कर सके।
1: गुलरुबा, मुझे भी तो यही जाने हयात।
0: नहीं नहीं फराज,
1: जिंदगी की हदों को पिघल कर बह जाने दो। गुलरुबा, जल्दी करो, ये एक फनकार की आखिरी दरखास्त है।
2: और ये भी मेरा फर्ज है। लीजिए फराज, ये तुमने क्या किया?
1: लाला रुख, जिंदगी की हदें चकना चूर हो गई, मोहब्बत कामयाब हो गई। मेरे करीब हो जाओ लाला रुख, मुझे अपने खिले हुए केसों के दामन में छिपा लो। कितनी महक है इन केसों में, जैसे इत्र की हल्की हल्की फुहार पड़ रही हो। चांद की किरणें तुम्हारे बालों में टांकने के लिए फिरदौस से फूल चुन रहे हैं। देख रही हो लाला रुख?
0: देख रही हूँ मेरे देवता।
1: इन्हें पहचानती हो?
0: हाँ, ये मेरे सपनों के फूल हैं।
1: सपनों के फूल, कितने हसीन हैं ये फूल। लाला रुख, मंजिल

0: फराज यहाँ है?
1: हाँ, लेकिन वो तुम्हें मिलेगा नहीं।
0: हटो एक तरफ।
1: जिंदगी की राह में पहाड़ खड़े करने वाले इंसानों, मोहब्बत सब कुछ बहा कर ले जाती है। मौत के मतवाले मोहब्बत का जाम

अभी आप सुन रहे थे जनाब कश्मीरी लाल जाकिर का तहरीर करदा ड्रामा उन्वान था फनकार। ड्रामे की पेशकश अनवर खान की थी। हिस्सा लेने वाले फनकार थे दीनानाथ ज्योतिषी, जलालुद्दीन, टी आर मेहता, एच के वर्मा, विनोद कश्यप और सैयदा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्मी नगमे।

लता मंगेशकर और इला अरुण की आवाजों में ये नगमा था लम्हे फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म है एक चादर मैली सी। आवाजें शब्बीर कुमार और आशा भोसले की हैं।

उदित नारायण और विभा शर्मा की आवाज़ों में इश्क फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे। प्रोग्राम की अगली पेशकश आपको सुनवाने जा रहे हैं जाने मन फिल्म से। आवाज़ें सोनू निगम और साधना सरगम की है।

नसीब है, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब है। अजीम है हमारी दास्तान जाने वाला।

न जाने कहाँ दिल खो गया।

उदित नारायण के साथ आपने अलका अनुराधा पौडवाल को माफ कीजिएगा सुना, फिल्म थी दिल। और अब सुनिए अलीशा शनोई के साथ कुमार सानू को, फिल्म है इश्क विश्क।

अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की आवाज में जानम फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। हमारे आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में है फिल्म है चमत्कार।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में चमत्कार फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। ये थी हमारे आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया के दौरे पर जा रहे हैं ताकि क़लीदी साझेदारी को मुस्तहकम बनाया जा सके और उभरते हुए शोबों में इश्तराक को सद दी जा सके। सरकार ने आबनाए हुरमुज के रास्ते रकीक कुदरती गैस LNG की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। मरकज ने मेटा को हुक्म दिया है कि इंस्टाग्राम से बच्चों के इस्तेहसाल से मुतालिक इश्तहारात हटाए जाएं। सरकार ने 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ की नामवर पंडवानी गुलुकारा तीजन बाई का इंतकाल हो गया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने उनकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया है। और ख्वातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया का दौरा कल से शुरू हो रहा है और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को तकवीत मिलेगी और इश्तराक के नए रास्ते भी खुलेंगे। आज जकार्ता में आकाशवाणी के साथ इंटरव्यू में इंडोनेशिया में भारत के सफ़ीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे और ताउन के कई नए शोबे खुलने से ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे और दो बड़े मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी राबते और ज़्यादा मजबूत होंगे। जामे क़लीदी साझेदारी के बारे में सफ़ीर मौसूफ़ ने कहा कि शराकतदारी के कई सुतून हैं, इनमें से एक दिफा और सिक्योरिटी है। इसके अलावा ताल्लुकात में और ज़्यादा इक्तिसादी सरगर्मियां भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के मुजवजा दौरे से कबल भारत को ऑस्ट्रेलिया का एक अहम इक्तिसादी शराकतदार करार दिया है। एक बयान में ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने कहा कि दुनिया की चौथी बड़ी और तेज़ी से तरक्की पजीर मईशत होने के नाते भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए नहायत अहम इक्तिसादी शराकतदार है। जनाब एंथनी अल्बनीज ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी पर मबनी हैं जो मजबूत इक्तिसादी और सकाफती रवाबित की बुनियादों पर कायम हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इस दौरे का मकसद भारत और मज़कूरा मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना और इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करना है। उमूर खारजा के वजीर ममलिकत कीर्ति वर्धन सिंह कल से स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में भारतीय वफद की क्यादत करेंगे, जहां वो अक्वामे मुत्तहिदा के मस्नूई ज़हानत के नज़्म व नस्क से मुतालिक पहले आलमी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। वज़ारत खारजा ने कहा है कि ग्लोबल डायलॉग ऑन AI गवर्नेंस अक्वामे मुत्तहिदा का एक आलमी और कसीर फरीकी फोरम है जिसका क़याम सितंबर 2024 में पैक्ट ऑफ द फ्यूचर के हिस्से के तौर पर अपनाए गए ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के बाद किया गया था। सरकार ने मगरबी एशिया महाजाराई में जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुरमुज के रास्ते रकीक कुदरती गैस LNG की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। एक नोटिफिकेशन में पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे की वजारत ने कहा है कि कुदरती गैस की सप्लाई से मुतालिक इंजिबाती ऑर्डर 2026 में तरमीम की गई है, जिसके तहत उन अहम इमरजेंसी दफात को हटा दिया गया है जिनकी रूस से सरकार को अंदरून मुल्क तैयार करदा कुदरती गैस और दरामद की गई LNG अलॉट करने को तरजीह हासिल थी। ब्रिक्स मुल्कों के मनुष्यात की रोकथाम से मुतालिक एजेंसियों के सरबराहों की दो रोज़ा मीटिंग कल आसाम में गुवाहाटी में शुरू हो रही है। उमूर दाखिला की वजारत के मुताबिक इस मीटिंग में मनुष्यात पर कंट्रोल से मुतालिक एजेंसियों के माबैन कार्रवाई से मुतालिक इश्तराक को मजबूत बनाने और इदारा जाती तसलसल

0: जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ की नामवर पंडवानी गुलुकारा तीजन बाई का इंतकाल हो गया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने उनकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। शाम के 5 बजने को है हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, युवा साथी सुने कार्यक्रम युवा वाणी।

सभी युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युववाणी लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हैं आपका अपना साथी करण वर्मा। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस अंक में, जिसमें हम चर्चा करेंगे युवा जीवन में संगति के प्रभाव की, शिक्षा में रेडियो के महत्व की, मानव जीवन में किताबों के महत्व की, भटनेर किले की, और साथ ही बात करेंगे आज के इतिहास की। मित्रों, कार्यक्रम में चर्चा करने से पहले आइए चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म राजा रानी का ये गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो जिन लोगों के साथ रहता है, उनके विचारों और व्यवहार का उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से युवावस्था में। संगति का महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि यही समय व्यक्तित्व निर्माण और भविष्य की दिशा तय करने का होता है। श्रोताओं, अच्छी संगति व्यक्ति को अच्छे संस्कार, अनुशासन, मेहनत और ईमानदारी की प्रेरणा देती है। अच्छे मित्र हमें पढ़ाई, खेल, समाज, सेवा और नैतिक मूल्यों की ओर प्रेरित करते हैं। उनके साथ रहने से आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सफलता प्राप्त करने की इच्छा मजबूत होती है। मित्रों, वहीं इसके विपरीत बुरी संगति युवाओं को गलत आदतों और बुरे कार्यों की ओर ले जा सकती है। नशा, झूठ, आलस, हिंसा और अनुशासनहीनता जैसी बुराइयां अक्सर गलत संगति का परिणाम होती है। ऐसी संगति से न केवल पढ़ाई प्रभावित होती है, जबकि परिवार और समाज में भी आदर कम हो जाता है। साथियों, युवा जीवन में मित्र चुनते समय सावधानी जरूर रखनी चाहिए। ऐसे मित्रों का साथ अपनाना चाहिए जो सकारात्मक सोच रखते हो, मेहनती हो और अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हो। माता पिता और शिक्षकों की सलाह का भी सम्मान हमें युवा जीवन में अवश्य करना चाहिए। अच्छी संगति जीवन को सफलता, सम्मान और खुशियों की ओर ले जाती है, जबकि बुरी संगति जीवन की कठिनाइयों और असफलता की ओर धकेल सकती है। इसीलिए वास्तव में प्रत्येक युवा को अच्छी संगति अपनानी चाहिए, क्योंकि सही संगति ही उज्जवल भविष्य और श्रेष्ठ चरित्र का आधार होती है। तो मित्रों, बातें और भी करेंगे, अब समय एक गीत का है। लीजिए अब सुनिए फिल्म दिल का ये गीत, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में।

दोस्तों, आइए अब बात करते हैं शिक्षा में रेडियो के महत्व की। मित्रों, रेडियो जनसंचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय माध्यम है। ये लंबे समय से हमारे तक समाचार, मनोरंजन, संगीत और शिक्षा पहुंचाने का कार्य करता आ रहा है। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो एक प्रभावी और उपयोगी साधन है। ये कम खर्च में अधिक से अधिक लोगों तक ज्ञान पहुंचाने का कार्य करता है। श्रोताओं, रेडियो शिक्षा का एक सरल, सस्ता और सुलभ माध्यम है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों की जानकारी, विशेषज्ञों के व्याख्यान, शैक्षिक चर्चाएं और सामान्य ज्ञान के कार्यक्रम सुनने का अवसर मिलता है। रेडियो के माध्यम से भाषा, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल और अन्य विषयों की जानकारी रोचक ढंग से प्रस्तुत की जाती है। इससे विद्यार्थियों की विषयों में रुचि बढ़ती है और उनकी समझ भी विकसित होती है। दोस्तों, हमारे देश भारत के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में आज भी सभी विद्यार्थियों के पास इंटरनेट या आधुनिक डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे स्थानों पर रेडियो शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है। इसके माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे शैक्षिक कार्यक्रम सुन सकते हैं और नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इससे शिक्षा का प्रसार होता है और ज्ञान सभी तक पहुँचता है। रेडियो विद्यार्थियों की सुनने की क्षमता, भाषा, ज्ञान और सामान्य जानकारी को बढ़ाने में भी सहायता करता है। समाचार सुनने से देश विदेश की जानकारी का ज्ञान मिलता है। कई रेडियो कार्यक्रम विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी उपयोगी सिद्ध होते हैं, जैसे हमारा कार्यक्रम युववाणी। दोस्तों, वास्तव में रेडियो शिक्षा के क्षेत्रों में एक अत्यंत उपयोगी और प्रभावशाली माध्यम है। ये कम लागत में अधिक लोगों तक ज्ञान पहुंचाता है, विद्यार्थियों में ज्ञान का विस्तार करता है और उन्हें जागरूक नागरिक बनने की प्रेरणा भी देता है। आधुनिक तकनीकों के विकास के बावजूद भी शिक्षा में रेडियो का महत्व कम नहीं हुआ है। इसीलिए विद्यार्थियों और शिक्षकों को इसका उचित उपयोग कर अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। तो श्रोताओं, चर्चा और भी करेंगे। आइए पहले चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के का ये गीत।

हाँ, मेरा दिल कह रहा है मैं सर से लेके पांव तक तेरे संदली बदन पे मोहब्बत लिख दूं। मेरा दिल कह रहा है मैं तेरे सुर्ख नरसते होठों की लाली पे अपने लबों की शबनमी शरारत लिख दूं। हाँ, मेरा दिल कह रहा है तेरी पाजेब की झंकार पे, तेरे बाहों के चंदन हाथ पे अपनी बेचैनियों की हालत लिख दूं। मेरा दिल कह रहा है तेरे उलझे गेसु सवाल इन आंखों के आईने में।

0: वाह, बधाई हो।
1: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
2: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: दोस्तों, आइए अब बात करते हैं जीवन में पुस्तकों के महत्व की। श्रोताओं, हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत बड़ा महत्व होता है। पुस्तकों को ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है, क्योंकि वे हमें सही मार्ग दिखाती है। कहा जाता है कि पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। एक सच्चे मित्र की तरह पुस्तकें हमें हमेशा सही सलाह देती है और कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती है। आज के समय में पुस्तकों का महत्व पहले की तुलना में अधिक बढ़ गया है। मित्रों, पुस्तकें ज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है। इनके माध्यम से हम इतिहास, विज्ञान, साहित्य, भूगोल, कला और कई अन्य विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। महान वैज्ञानिकों, लेखकों और महापुरुषों के विचार हमें पुस्तकों के माध्यम से ही मिलते हैं। पुस्तकें हमें नई नई बातें सिखाती हैं और हमारी सोच को व्यापक बनाती है। साथियों, पुस्तकें हमारे व्यक्तित्व के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छी पुस्तकें पढ़ने से हमारे विचार सकारात्मक बनते हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। महान लोगों की जीवन कथाएं पढ़कर हमें उनके संघर्ष, परिश्रम और सफलता से सीख मिलती है। पुस्तकें केवल ज्ञान ही नहीं देती, जबकि मनोरंजन का भी अच्छा साधन होती है। कहानियाँ, उपन्यास, कविताएँ और नाटक पढ़कर हमें आनंद मिलता है। इससे हमारा मन प्रसन्न रहता है और हमारा समय भी अच्छे कार्य में व्यतीत होता है। अच्छी पुस्तकें पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति भी बढ़ती है। तो श्रोताओं, चर्चा तो चलती रहेगी, लेकिन अब समय एक गीत का है। लीजिए अब सुनिए फिल्म दिल तो पागल है का ये गीत।

दोस्तों, आइए अब बात करते हैं भटनेर दुर्ग की। भटनेर दुर्ग हमारे राज्य राजस्थान के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध दुर्गों में से एक है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये दुर्ग भारत के सबसे प्राचीन किलों में गिना जाता है। अपनी मजबूत संरचना, ऐतिहासिक महत्व और वीरता की गाथाओं के कारण भटनेर दुर्ग का विशेष स्थान है। ये दुर्ग राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है। श्रोताओं, इतिहासकारों के अनुसार भटनेर दुर्ग का निर्माण लगभग 3री शताब्दी में भाटी वंश के राजा भूपत ने करवाया था। भाटी शासकों के नाम पर ही इसका नाम भटनेर पड़ा था। समय समय पर इस दुर्ग पर अनेक शासकों ने अधिकार किया था। ये दुर्ग अपनी सामरिक स्थिति के कारण सदैव महत्वपूर्ण बना रहा है। मित्रों, सन 1805 में महाराजा सूरत सिंह ने इस दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी। ये विजय मंगलवार के दिन हुई थी, जो भगवान हनुमान को समर्पित माना जाता है। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम आगे चलकर हनुमानगढ़ प्रसिद्ध हो गया। भटनेर दुर्ग ईंटों से निर्मित एक विशाल और मजबूत किला है। इसके चारों ओर ऊंची और मोटी प्राचीर बनी हुई है। दुर्ग में अनेक बुर्ज, विशाल द्वार, महल, मंदिर और अन्य ऐतिहासिक भवन भी स्थित हैं। दुर्ग की सुरक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि शत्रुओं के लिए इसे जीतना अत्यंत कठिन माना जाता था। दोस्तों, वास्तव में ये दुर्ग राजस्थान की वीरता, शौर्य और समृद्ध इतिहास का अमूल्य प्रतीक है। इसकी भव्य संरचना, ऐतिहासिक घटनाएं और सांस्कृतिक महत्व इसे विशेष बनाते हैं। हमें अपनी इस ऐतिहासिक धरोहर का सम्मान जरूर करना चाहिए और इसके संरक्षण में सहयोग देना चाहिए। तो श्रोताओं, बातें और भी करेंगे।

प्राकृतिक नगर है। इसे झीलों की नगरी व पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रेणियों से घिरा ये शहर न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मेवाड़ साम्राज्य की गौरवशाली विरासत और शौर्य की अमर गाथाओं के लिए भी जाना जाता है। मित्रों, उदयपुर की स्थापना मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने 1559 ईस्वी में की थी। चित्तौड़गढ़ पर बार बार होने वाले आक्रमणों और युद्धों के कारण एक सुरक्षित व सामरिक दृष्टि से उपयुक्त स्थान की खोज की जा रही थी। इसी क्रम में उदयसागर झील के आसपास का क्षेत्र उपयुक्त पाया गया और यहाँ मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित की गई। साथियों, उदयपुर का इतिहास वीरता, स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। महाराणा प्रताप जैसे अदम्य योद्धा ने इस भूमि पर जन्म भी लिया है। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में मेवाड़ की सत्यनिष्ठा और स्वतंत्रता भावना का सबसे सशक्त उदाहरण माना जाता है। इस प्रकार उदयपुर केवल एक शहर नहीं, जबकि निरंतर संघर्ष और अस्मिता का जीवंत पहचान है। दोस्तों, उदयपुर का सबसे बड़ा आकर्षण ही इसकी झीलें हैं, जैसे पिछोला झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील और स्वरूप सागर झील जैसी अनेक जलराशियां इस शहर को अनोखी सुंदरता प्रदान करती हैं। इन झीलों ने उदयपुर को न केवल प्राकृतिक सौंदर्य दिया है, जबकि यहाँ की जीवन शैली, जल प्रबंधन और पर्यटन को भी समृद्ध किया है। तो श्रोताओं, चर्चा और भी करेंगे, आइए पहले चलते हैं रंगमंच की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत।

दोस्तों, आइए अब बात करते हैं झीलों की नगरी उदयपुर की। श्रोताओं, राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित उदयपुर जिला भारत का एक अत्यंत सुंदर, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक

दोस्तों, आइए अब बात करते हैं टुडेज हिस्ट्री यानी आज के इतिहास की। श्रोताओं, आज ही के दिन सन 1811 में वेनेजुएला स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बना था। 5 जुलाई के दिन ही सन 1996 में स्कॉटलैंड के रोसलिन इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिकों की टीम ने पहली बार व्यस्क कोशिका से स्तनपाई क्लोन डोली भेड़ का जन्म भी किया था। मित्रों, 5 जुलाई के दिन ही सन 1947 में भारत के नामी जीव विज्ञानी लाल सिंह जी का जन्म भी हुआ था। आज ही के दिन सन 1995 में भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का जन्म भी हुआ था। 5 जुलाई के दिन ही सन 1957 में भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, वकील और आधुनिक बिहार के निर्माता अनुग्रह नारायण सिन्हा का निधन भी हुआ था। तो साथियों, युववाणी कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए एक बार फिर चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म बोल बच्चन का ये गीत।

साथियों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना पसंद है। आपकी पसंद तो मुझे पता नहीं, हमें तो आपका मुस्कुराना पसंद है। युववाणी कार्यक्रम के आखिर में आइए चलते चलते सुनते हैं फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का ये गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम यहीं तक। अब अपने साथी करण वर्मा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर, DRM 909 किलोहर्ट्ज पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर। शाम के 6 बजे हैं, अब सुने कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में पहले सुने जानकारी हमारे सभा के शेष प्रसारणों के संबंध में। अब से कुछ ही देर बाद शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सराय की, जिसकी 27वीं कड़ी आपको सुनवाई जाएगी। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज शाम 7 बजे से आप सुनेंगे लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम लंदन में आयोजित होने वाले ICC T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले फाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण। रात 10:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। ये थे हमारे सभा के शेष प्रसारण और उनका प्रसारण समय। कार्यक्रम विवरण में अब सुने जानकारी हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में। प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:50 पर। चिंतन होगा 6:45 पर। उससे पहले 6:10 पर आप सुनेंगे भक्तिमय संगीत की सुरीली यात्रा वंदना। कार्यक्रम खेतिया नवास्ते में किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय रहेगा फसलों में पोषक तत्वों का महत्व। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:10 पर। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस पर आधारित गान पाठ मानस गान कल आप सुनेंगे इसका 296वां भाग प्रातः 7:20 पर। सुप्रभात होगा 7:30 पर। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल आप सुनेंगे 9:10 पर। कलाकार रहेंगे कमलेश भारद्वाज। 9:30 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्म मिनट में। 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फनकार यानी आज के फनकार फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुना करते हैं। 1 घंटे का ये कार्यक्रम रहा करता है। कल सोमवार है और कल सोमवार के दिन 11 बजे आप सुना करते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत बहार। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए हमारे केंद्र से दिन में 12:05 पर प्रसारित किया जाएगा। सुगम संगीत आप सुनेंगे 12:30 पर। कार्यक्रम खेत खलियान में प्राकृतिक खेती लाभकारी कृषि पद्धति विषय पर जानकारी आपको दी जाएगी दिन में 12:50 पर। बहनें सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत दोपहर 1:05 पर मधुलता पुरोहित के साथ। जानकारी के बिंदु रहेंगे अपनापन और प्यार जोड़े परिवार शरीर में आयरन की कमी लक्षण व निवारण मॉनसून स्नैक्स और ब्यूटी टिप्स। युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी शाम 5 बजे। 6:05 पर सराइकी आप सुनेंगे। ग्रामीण परिवार सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम चौपाल सुनील शर्मा के साथ शाम 7 बजे। फिल्म संगीत 7:45 पर और एक ही फिल्म से कार्यक्रम रात 8 बजे आप सुन सकते हैं। 9:15 का समय रहेगा कार्यक्रम सुगम संगीत के लिए। कल रात 10 बजे हमारे जयपुर केंद्र से कार्यक्रम आयोजित होगा खेल जगत। 10:30 पर कुछ फिल्म नगमे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर। शाम के 6:05 हुए हैं। अब सुने सराय की

0: न्यूज़ ऑन एयर पर। शाम के 6:30 हुए हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटाई। आबूराज में विधि मंत्रालय की ओर से 2 दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर संपन्न। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, शिविर में तैयार घोषणा पत्र देश में सुधार की रफ्तार तेज करेगा। और राज्य के कई इलाके मानसूनी बारिश से तरबतर, आज अधिकांश जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो, ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों में किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होमोर्ज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है, जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होमोर्ज जल डमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज कोटपुतली बहरोड के मुंडावर में 24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने शाहजहांपुर में ई लाइब्रेरी और सहकारिता भवन का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी सौगात देते हुए देशवासियों का सपना पूरा किया है। उन्होंने यमुना जल के ऐतिहासिक समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के सूखा प्रभावित तक पानी पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने वहां विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को आसान बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि प्लेटफॉर्म ने भारत के मध्य

अभी आप सुन रहे थे सरायकी। हम आकाशवाणी के कॉटन 3 चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 14.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल

स्वास्थ्य सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है या नहीं। भारत में डिजिटल कानूनों के तहत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। सिरोही जिले के आबूराज की ज्ञान सरोवर में विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से 2 दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर आज संपन्न हुआ। समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

0: AIR.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। सिरोही जिले के आबूराज के ज्ञान सरोवर में विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से दो दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर आज संपन्न हुआ। समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ऐसे शिविर आत्मचिंतन और व्यक्तित्व विकास के माध्यम से कार्यकुशलता, सकारात्मक नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि ये शिविर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सभी को संकल्पित करेंगे। श्री मेघवाल ने कहा कि शिविर में मंथन के बाद तैयार किया गया घोषणा पत्र देश में सुधार की रफ्तार को तेज करेगा।
1: माउंट आबू घोषणा का जो अर्थ है कि हम सुधार की रफ्तार को और तेज करेंगे। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किसी कारण से लीगल पेच के कारण फंसे हुए हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है। उनमें जो हमारे अटॉर्नी जनरल है या हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या डिप्टी सॉलिसिटर जनरल या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्टैंडिंग काउंसिल है, उनको भी हम ये जो हमारा माउंट आबू का जो घोषणा पत्र है उसके बारे में वहां जाकर के दिल्ली में जिक्र करेंगे, ताकि इस घोषणा पत्र के अनुसार हमारी जो लीगल कैपेसिटी बढ़ेगी, इससे भारत को विकसित भारत बनने में मदद मिलेगी।
0: चिंतन शिविर में देश भर से आए विधि विशेषज्ञों, न्यायिक अधिकारियों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने न्यायिक सुधारों, तकनीक आधारित न्याय व्यवस्था, पारदर्शिता और जनसुलभ न्याय जैसे विषयों पर विभिन्न सत्रों में चर्चा की। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना और उन्हें अधिक सक्रिय जीवन शैली की ओर ले जाना है। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाना हृदय, शरीर और मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने में सहायक है। मंत्री ने साइकिल चलाने के विभिन्न स्वास्थ्य लाभों का उल्लेख किया। उन्होंने इसे शहरों में प्रदूषण और यातायात की समस्या का समाधान बताया। अमरनाथ यात्रा के पहले दो दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। इस बीच श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में 291 वाहनों में 6,731 श्रद्धालु शामिल हैं। इनमें से 4,000 से अधिक श्रद्धालु 139 वाहनों में पारंपरिक पहलगाम मार्ग से जा रहे हैं, जबकि लगभग 2,000 श्रद्धालु 152 वाहनों में बालटाल मार्ग की तरफ से जा रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में आज सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर सेना के ट्रक और एक निजी एम्बुलेंस के बीच टक्कर में एम्बुलेंस में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। यह हादसा सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में 22LGW के पास हुआ। गंभीर घायलों को तत्काल सूरतगढ़ के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। प्रदेश में जहां एक और कई जिले मॉनसून की बारिश से तर हो रहे हैं, वहीं कई जिलों को बरसात का इंतजार है। राजधानी जयपुर में सुबह से चल रही बादलों की लुका छिपी के बाद दोपहर में कई जगह तेज तो कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। सवाईमाधोपुर में सुबह झमाझम बरसात हुई। हनुमानगढ़ में भी जिला मुख्यालय सहित भादरा, संगरिया और पल्लू क्षेत्र में बारिश दर्ज की गई। पाली और आसपास के क्षेत्र में अच्छी बारिश होने से किसानों ने खरीफ फसल की बुआई की तैयारी शुरू कर दी है। उदयपुर में शाम को हुई मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। उधर बालोतरा और सिरोही जिले में सुबह से उमस और गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के पूर्वी भागों में आगामी 5-6 दिन मानसून सक्रिय रहने और अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश तथा कहीं कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में कल से भारी बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी हो सकती है। आज लगभग सभी संभागों के जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। भरतपुर के विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए इन दिनों बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमियों का आना जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पक्षियों के आकर्षक समूह पर्यटकों को रोमांचित कर रहे हैं।
2: केवलादेव की छिछली पानी की झीलों में समूह में खड़े इन पक्षियों की लंबी गर्दन, गुलाबी चोंच और संतुलित मुद्रा को देखने के लिए प्रकृति प्रेमी उत्साहित रहते हैं, तो वहीं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों सहित पर्यटक भी इनकी तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के लिए लालायित हो

0: नजर आते हैं। यह पक्षी विशेष रूप से मुड़ी हुई चोंच की सहायता से छिछली पानी को छानकर शैवाल, छोटे जलीय जीव और लार्वा को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
1: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा आज प्रदेश भर में दो पारियों में आयोजित की गई। परीक्षा के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां की थी। दो पारियों में हुई ये परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित हुई। सवाईमाधोपुर जिले में 35 और भीलवाड़ा जिले में 41 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा रखी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटाई। अब राज्य में विधि मंत्रालय की ओर से 2 दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर संपन्न। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, शिविर में तैयार घोषणा पत्र देश में सुधार की रफ्तार तेज करेगा। और राज्य के कई इलाके मानसूनी बारिश से तरबतर, आज अधिकांश जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया। इससे राजधानी जयपुर में यातायात सुगम होगा और लोगों का समय बच सकेगा। 41 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर शहर के उत्तर और दक्षिण हिस्सों को जोड़ेगा, जिससे प्रहलादपुरा से सीकर रोड स्थित टोड़ी तक का सफर आसान होगा। इसमें 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करेंगे। इस रूट को ऑरेंज लाइन भी कहा जाता है। इसका पहला हिस्सा पिंजरा पोल गौशाला तक बनेगा और दूसरा पिंजरा पोल से जवाहर सर्कल होते हुए एयरपोर्ट तक का 3 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। इसके साथ ही फेज 1 और फेज 2 को जोड़ने के लिए खासा कोठी में नया इंटरचेंज स्टेशन बनाया जाएगा। ये मेगा प्रोजेक्ट राजधानी के सार्वजनिक परिवहन को एक नई गति देगा। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते दिनों जयपुर आकाशवाणी परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमांत क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने इस समय इन संस्थानों में परिवर्तन पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद श्री वैष्णव ने MNIT में सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और AI लैब विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद भी किया तथा नवाचार, तकनीक और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भी शिरकत की। हाल ही में राजधानी में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस देश में बदलाव का सशक्त माध्यम बन रही है। तकनीक के प्रभावी उपयोग से सरकारी योजनाओं में बिचौलियों का दखल खत्म हुआ है। इस अवसर पर श्री शर्मा ने स्मार्ट परियोजना, ई मित्र, व्हाट्सएप सेवा और राजस्थान इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। इससे पहले श्री शर्मा ने तकनीकी सेवाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर उसका अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। समारोह का समापन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। सहकार सप्ताह के तहत जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार, तकनीकी दक्षता और उत्कृष्ट कार्यों के लिए सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक सबके लिए सब एक के लिए के सिद्धांत पर आधारित

0: जन कल्याण की सशक्त विचारधारा है। उन्होंने कहा कि एकता, विश्वास और सामूहिक प्रयासों से हर चुनौती का सामना करते हुए समावेशी और सतत विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। बीते दिनों जिले में 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बिड़ला सभागार में हुए इस समारोह में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा जगत के 276 दानदाताओं और प्रेरकों को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री बैरवा ने दानदाताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि भामाशाहों की ये भावना समाज के प्रति उत्तरदायित्व और सेवा का प्रतीक है। इससे हजारों विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने में सहायता मिलती है। महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी राय की स्मृति में मनाए जाने वाला डॉक्टर्स डे राजधानी में समारोह पूर्वक मनाया गया। सवाई मानसिंह अस्पताल सहित विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टर्स ने निस्वार्थ सेवा की शपथ ली। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की सह आचार्य डॉक्टर अदिति ने चिकित्सा पेशे को सेवा के साथ ही आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला बताया। इस दिन चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों के समर्पण, सेवा भावना और मानवता के प्रति योगदान का सम्मान किया जाता है। इसी के साथ जयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर सु पेश है प्रादेशिक समाचार। पहले आज री खास खबरां। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 रे तहत राज्य ने 25,000 करोड़ रुपया री सहायता रकम जारी करी। केंद्र सरकार तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी री आपूर्ति सु आपातकालीन पाबंदियां हटाई। आबू राजमाए विधि मंत्रालय री कानी सु दो दिन रा रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर संपन्न। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो शिविर माए तैयार घोषणा पत्र देश माए सुधार री रफ्तार तेज करेला। और राज्य रा कई हल्का मानसूनी बिरखा सु तरबतर, आज घणकर जिला माए तेज बिरखारो अलर्ट। समाचारां रे साथे मैं संगीता शर्मा और अब है समाचार विगतवार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 रे तहत राज्यां खातिर 25,000 करोड़ रुपया री मुख्य सहायता रकम जारी करी। वणा 1 जुलाई सु इन अभियान रे सफलतापूर्वक लागू होने माते खुशी जताई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे मार्फत रकम जारी करने रे पाछे श्री सिंह सगला राज्यां और केंद्र शासित प्रदेशां रा ग्रामीण विकास मंत्रियां साथे वीबीजी रामजी योजना मारे कार्यान्वयन री समीक्षा भी करी। वणा कयो के आज जारी करी जी पहली किस्त रो लखस ओ पक्को करनो है के राज्यां रे कने पुख्ता रकम होवे ताकि मजूरी रो भुगतान 15 दिना माए करियो जा सके। वणा कयो के मनरेगा ने लागू होने माए 3 बरस सु 32 रो बखत लाग्यो हो, जदे के विकसित भारत जी राम जी ने पूरे देश माए सिर्फ 1 दिन माए लागू कर दियो गयो।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान कहो के वीबीजी रामजी योजना रे तहत मजदूरी दरामाएं औसतन लगे टके 10% री बढ़ोतरी करी जी है। केंद्र सरकार तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी री आपूर्ति सु आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। ओ फैसलो पश्चिम एशिया संघर्ष माए युद्ध विराम रे पाछे होरमूज जल डमरू मध्य सु प्राकृतिक गैस री आपूर्ति फेरू होने रे पाछे करियो गयो है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना माए कयो है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 माए बदलाव करियो गयो है। इन बदलाव रे तहत वहाँ खास आपातकालीन प्रावधाना ने हटा दियो गयो है, जिन रे तहत सरकार ने देश माए उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी रे आवंटन माए प्राथमिकता देने री इजाजत ही। होरमुज जल डमरू मध्य सु एलएनजी री खेप माए रुकावट आने रे पाछे इन बरस मार्च माए आवश्यक वस्तु अधिनियम रे तहत ओ आपातकालीन हुकुम जारी करियो गयो हो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज कोटपुतली बहरो

0: रहे मुंडावर माए 24 करोड़ रुपया रे विकास कामारो उद्घाटन करो। वणा शाहजहांपुर माए ई लाइब्रेरी और सहकारिता भवन रो लोकार्पण भी करो। इन मौके माथे वणा कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले राजस्थान ने ऊर्जा खेतर माए बड़ी सौगात देता हुआ देशवासियों रो ओ सपनो पूरो करो है। वणा यमुना जल रे ऐतिहासिक समझौते रो जिक्र करता थका कहो कि इनसु प्रदेश रे सूखा प्रभावित खेतरा ताई पानी पहुंचाने रो मार्ग खुल्यो है। केंद्रीय मंत्री वठे न्यारा न्यारा सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में भी भाग लियो। केंद्र सरकार सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम माथे फीस वाला विज्ञापन माए बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री रे प्रसार ने लेर मेटा ने कड़ी चेतावनी जारी करी है। सरकार इंस्टाग्राम ने एड़ी विषय वस्तु ने बधावो देवण और इंडरी पहुंच ने सोरो बनावण वाला सगला विज्ञापन और सामग्री ने बंद करने रो हुकुम दियो है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटा सू 7 दिनारे माए स्पष्टीकरण मांग्यो है। सरकार इन बात री समीक्षा कर रही है कि प्लेटफॉर्म भारत रे मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों रो अनुपालन करियो है या नहीं। भारत माए डिजिटल कानूना रे तहत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री रो वितरण एक अपराध है। इनसु पहले मंत्रालय वहाँ रिपोर्टा रो संज्ञान लियो हो जिका माए कहो गयो हो कि इंस्टाग्राम माथे कुछ एक आपत्तिजनक सामग्री दिखाई जा रही है जिको बाल यौन शोषण ने बढ़ावो देवे है और अहलकारा ने मेटासू जवाब मांगने रा हुक्म जारी करया है। ऐ खबर आप आकाशवाणी रे जयपुर अजमेर केंद्र सू सुन रहा हो। सिरोही जिले रा आबू राजरा ज्ञान सरोवर माए विधि और न्याय मंत्रालय री कानी सू 2 दिन रो रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर आज पूरो वियो। समापन सत्र माए संबोधित करता थका केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो कि एड़ा शिविर आत्मचिंतन और व्यक्तित्व विकास रे माध्यम सू कार्य कुशलता सकारात्मक नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव ने नूवी ऊर्जा देवेला। वणा कहो कि ऐ शिविर विकसित भारत रा संकल्प ने साकार करण माए महती भूमिका निभाने खातिर सगड़ा ने संकल्पित भी करे। श्री मेघवाल कहो कि शिविर माए मंथन रे पाछे तैयार करियो गयो घोषणा पत्र देश माए सुधार री रफ्तार ने तेज करेला।
1: माउंट आबू घोषणा का जो अर्थ है कि हम सुधार की रफ्तार को और तेज करेंगे। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किसी कारण से लीगल पेच के कारण फंसे हुए हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है। उनमें जो हमारे अटॉर्नी जनरल है या हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या डिप्टी सॉलिसिटर जनरल या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्टैंडिंग काउंसिल है उनको भी हम ये जो हमारा माउंट आबू का जो घोषणा पत्र है उसके बारे में वहां जाकर के दिल्ली में जिक्र करेंगे ताकि इस घोषणा पत्र के अनुसार हमारी जो लीगल कैपेसिटी बढ़ेगी, इससे भारत को विकसित भारत बनने में मदद मिलेगी।
0: चिंतन शिविर माए देश भर सू आया विधि विशेषज्ञ न्यायिक अहलकारा और मंत्रालय रा मोटा अहलकार न्यायिक सुधारा तकनीक आधारित न्याय व्यवस्था पारदर्शिता और जनसुलभ न्याय जड़ा मुद्दा माथे न्यारा न्यारा सत्रा माए चर्चा करी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नवी दिल्ली माए राखी जा फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल रा 80वां संस्करण माए भाग लियो। इन अभियान रो लखस लोगा रे व्यवहार माए बदलाव लाणो और वाने 32 सक्रिय जीवन शैली री कानी ले जानो है। मीडिया सू बात करता थका केंद्रीय मंत्री कहो के साइकिल चलाणो हृदय शरीर और मन ने स्वस्थ और तंदुरुस्त राखने माए सहायक है। श्री मांडविया साइकिल चलाने रा न्यारा न्यारा स्वास्थ्य लाभां रो भी जिक्र करियो। वणा इनने शहरा माए प्रदूषण और यातायात्री समस्या रो समाधान भी बतायो। श्री गंगानगर जिले रा सूरतगढ़ खेतर माए आज सुवारे राष्ट्रीय राजमार्ग 62 माथे सेना रे ट्रक और एक निजी एम्बुलेंस रे बीचे टक्कर माए एम्बुलेंस माए सवार 3 जना री मौके माथे ही मौत वेगी। हादसा माए 2 जना गंभीर रूप सू घायल वे गया। हादसा रे पाछे हाईवे माथे कुछ बखत खातिर यातायात प्रभावित रियो। ओ हादसो सूरतगढ़ सदर थाना खेतर माए 22 LGW रे कन्ने हुयो। गंभीर घायला ने तुरंत सूरतगढ़ रे राजकीय सफाखाना पहुंचायो गयो। और अब मौसम प्रदेश माए जठे एक कानी कई जिला मानसून री बिरखा सू तर हो रिया है वठीने दूजी कानी कई जिला बरसात री उड़ीक कर रिया है। राजधानी जयपुर माए सुवारे सू चाल री बादला री लुका छुपी रे पाछे दोपहरा माए कई जगहवां तेज और कठी कठी हल्की बिरखा हुई। सवाई माधोपुर माए सुवारे झमाझम बरसात हुई वठीने हनुमानगढ़ माए भी जिला मुख्यालय समेत भादरा संगरिया और पल्लू खेतर माए तेज बिरखा दर्ज करी जी। पाली और आसे पासे रा खेतर माए चोखी बिरखा होने सू काश्तकार खरीफ फसल री बुआई री तैयारियां शुरू कर दी है। उदयपुर माए सिंजा हुई मूसलाधार बिरखा सू शहर रा कई इलाका माए पानी भर गयो। बठीने बालोतरा और

0: सिरोही जिला में सुवारे सू उमस और गर्मी सू जनजीवन घणो प्रभावित है। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब राज्य रा पूर्वी भागा में आवता 5-6 दिना में मॉनसून सक्रिय रहने और घणकर ठोड़ा माथे हल्की सू मध्यम बिरखा और कठी कठी भारी बिरखा री आस है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में काले सू भारी बरसात री गतिविधियां में और बढ़ोतरी हो सके है। आज लगे टके सगड़ा संभागा रा जिला में तेज बिरखा रो अलर्ट है। भरतपुर रा विश्व प्रसिद्ध केवला देव राष्ट्रीय उद्यान माए प्रवासी परिंदा ने देखने खातिर आ दिना घनी तादाद माए पंछी प्रेमियां रो आणो जारी है। माणा खबरनवीस बतायो के पंछियां रा आकर्षक समूह सैलानियां ने रोमांचित कर रिया है।
1: केवला देव की छिछली पानी की झीलों में समूह में खड़े इन पक्षियों की लंबी गर्दन, गुलाबी चोंच और संतुलित मुद्रा को देखने के लिए प्रकृति प्रेमी उत्साहित रहते हैं, तो वहीं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों सहित पर्यटक भी इनकी तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के लिए लालायित होते नजर आते हैं। ये पक्षी विशेष रूप से मुड़ी हुई चोंच की सहायता से छिछली पानी को छानकर शैवाल, छोटे जलीय जीव और लार्वा को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
0: अमरनाथ यात्रा रा पहला दो दिना माए 32,313 श्रद्धालु पवित्र गुफा मिंदर माए दर्शन करया। इन बीचे श्रद्धालुओं रो चौथो जत्तो आज सुवारे जम्मू रा भगवती नगर निवासों यात्री कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रे बीचे रवाना हुआ। इन जत्थे माए 291 वाहना माए 6,731 श्रद्धालु भेड़ा है। इन माए सू 4,032 श्रद्धालु 139 वाहना माए पारंपरिक पहलगांव मार्ग सू जा रिया है, जदके लगे टके 2,000 श्रद्धालु 152 वाहना माए बालटाल मार्गरी तरफ सू जा रिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड री कानीसू राखीजी लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा आज प्रदेश भर में दो पारिया में हुई। परीक्षा रे सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन खातिर प्रशासन सगली तैयारियां करी ही। दो पारिया में राखीजी आ परीक्षा सुवारे 9:30 बजे सू दोपहर 12:30 बजे ताई और दूजी पारी में दोपहर 3 बजे सू सिंझा 6 बजे ताई हुई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह भारत में लीवर री बीमारी और टाइप 2 मधुमेह सू निपटने रे खातिर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने रो हेलो करियो है। नवी दिल्ली में लीवर एंड मेटाबॉलिज डिजीज नेटवर्क री तीजी वर्षगांठ में डॉक्टर सिंह कहो के ए रोग अब पहली री तुलना में कम उम्र रे लोगों में भी देखा जा रहा है। वणा कहो के देश री जेनेटिक बनावट, पेट रे आसे पासे चर्बी री 32 समस्या और भारतीय री शारीरिक बनावट रे कारण लोगों में मधुमेह, फैटी लीवर और हृदय रोग रो खतरो बत्ती है। डॉक्टर सिंह कहो के वैज्ञानिक तरक्की रे साथ है बड़े पैमाने माथे जन जागरूकता और व्यवहार में बदलाव सू इन चुनौती रो निपटो जा सके है। और आखिर में खास समाचार एक फेरू सुनो। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 रे तहत राज्य ने 25,000 करोड़ रुपया री सहायता रकम जारी करी। केंद्र सरकार तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी री आपूर्ति सू आपातकालीन पाबंदियां हटाई। आबू राज माए विधि मंत्रालय री कानीसू 2 दिन रा रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर संपन्न। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो शिविर माए तैयार घोषणा पत्र देश माए सुधार री रफ्तार तेज करेला। अर राज्य रा कई हल्का मानसूनी बिरखा सू तरबतर, आज घणकर जिला माए तेज बिरखा रो अलर्ट। इनरे साथे ही प्रादेशिक समाचार रो ओ बुलेटिन अठाई पूरो व्यो। माणो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर, DRM 909 किलोहर्ट्ज पर और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही साथ ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर। शाम के 7 बजे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

कार्यक्रम सुनने सगळ्या परिवाराने भाई विशाल के नियो मोकळी मोकळी राम राम। आज बात करा चौपाल में भाई लोगों के, आपने समाज में जिया जिया मानव सभ्यता एक पायदान ऊपर चढ़ रही है या कैस का के जिया तरक्की होने लाग रही है। आप प्रगति की बात करा, तरक्की की बात करा, अंग्रेजी में कह करे ग्रोथ की बात करा, विकास की बात करा, तो कई जी की चीज़ा में बहुत बढ़िया लागे। विकास देखा, तरक्की देखा, विचारा में खुलोपन देखा, जो तो बढ़िया है। पर कदी कदी के है कि तरक्की के चक्कर में बहुत सा परिवार आपकी जी की जड़ा है दियूं अलग होना शुरू कर दे। अरबिंगो जी को असर है वो बी टाइम तो कौन दिखे, पर कुछ साल बाद कोई दशकां बाद बिंगो असर दिखन लग गया, फिर चिंता जी की नहीं वो बढ़ जाए, परेशानी जी की है वो बढ़न लग जाए। ई त्रियांगो कोई एक बड़ो जिकन का आपा एक समस्या के रूप में आपने सामने सब परिवार के सामने थे देखन लाग रहा हो के टाबर टीकरा जी का है बे जवान होने लग गया, बनाई लिखाई भी करे, आपके नौकरी धंधे वास्ते कोशिश भी करे, प्रयास भी करे, वे सब आपकी जगह हैं। पर बाकी बांगी जी की आपके परिवार ने जीवन में शुरू करने की जी की उम्र है नहीं वो टिप्पण लाग जाए। अरबी सुखे है कि जी को एक पारिवारिक चक्र है, आयु को जी को चक्र है वो तो डवाडोल हो जाए, और बिंगा प्रभाव या कवा बिंगा दुष्प्रभाव जी का है मैं दिखन लाग जाए। बहुत जरूरी है पढ़ाई लिखाई आपके टाइम पर करनी, थे नौकरी की तैयारी भी टाबर कराए जी का करनी भी जरूरी है, कोई आपको काम धंधों की तैयारी है वो भी करनी जरूरी है, पर इन चीज़ ने भी अब मानो बहुत जरूरी है। एर बड़ा बडेरा भी कार्यक्रम सुने है, लुगाया भी सुना है, टाबर भी सुना है, जब बने भी आप चीज़ समझनी जरूरी है कि अब बहुत ज़्यादा जी कहने में समस्या विकराल रूप लेने तैयार हो रही है। पहले तो उम्र ने कोई नहीं, चलो 25 गो गयो, 26 गो गयो, 28 गो गयो, छोरो है तो चलो 30 गो भी कोई बात नहीं, 35 गो गयो, छोरियाँ हो रही है 35-35 साल की, 40-40 साल की उम्र हो जाए बच्चियाँ की, लड़कियाँ की, ए लड़का हो रहा है इन्हों बड़ा, एर क्यों को नहीं हुआ है, क्योंकि अपनी जी की अपेक्षा वह है, आप जी की बिना ही काम की आप अपेक्षा करा कि नहीं नहीं तो रिप्यू होना चाहिए, नहीं नहीं मैं तो इन शहर में कौन करा, नहीं मैं तो इन गांव में कौन ब्यावा, नहीं मैं तो अठे करांगा, नहीं मैं तो इं करांगा, नहीं मैं तो बिया करांगा, अब सब के चक्कर में के उम्र टिपती रहे, और वो एक कर टिपकी जी की उम्र है नहीं, वो फिर बाद में बंग परिवार की जी की आगे कोई व्यवस्था बनाए और बनाए। कच्ची उम्र है जी की भी मैं थोड़ो बिल्कुल थे एक जी की औसत आप व्यस्क आयु न कहाँ जी कहना है भी 18 वर्ष की लड़की नहीं हुआ है तो कोई नहीं, चलो 20-22-23-24 तक भी थे सोचो, पर आज जी की उम्र है भी उम्र टिप्पे बाद फिर वो परिवार की जिम्मेदारियाँ ने और ने संभालन में और में डढ़े को नहीं बच्चा,

0: के
1: के है?
0: कई दिन हो गया थे आपनी मलड़ी कने मिले हो और सगा नाराज हुसी कितना संदेशा घाल दिन्या अब तो जानो ही चाहिए।
1: अरे ओ सान आवे तो ही जाऊं कठई आ दिना मैं खेत क्यार को काम ही गणो है।
2: जाओ बाबा जाओ मलड़ी के सासुरे जरूर मिल रहा है।
1: अरे अब तन्ने क्यों हो गयो?
2: बाबा मलड़ी के ससुरे से जरूर मिले।
0: तो हंसे क्या मी है तो खेत क्यार को काम तो छोरा आप पे ही देख लेसी है ओ मिलियो नहीं आपनी मलड़ी से।
1: अरे के जाऊं बठे सगो तो सोला मुट

0: तिलक खड़खड़ वे बने बोला कि अरे वे समझे कि करा होली की जवाब दे दिवाली को।
1: बाबा थाने लाग तो सी मल्ले तो पागी बाता में बड़ो ही मजो आवे।
0: अरे तन्ने के मजो आवे है
1: जी करे जड़ माजू बात करतो ही रू करतो ही रू करतो ही
2: बेटा तेरे सागे इसी के बात बैठगी जको इतना अच्छा लागन लाग गया तेरो बाबुलियो तो बिन्ने जान खातर मुंह ही कोनी करे।
0: अरे तन्ने सगो क्या सावर लागन लाग्यो हैं कि समझ पड़ा है कि तन्ने हैं अरे थे तो दोनों ही हिस्सा हो रहा है। ले आसे बेटो
1: पापा बे बात करागी जो तो होता गूदड़ा मैं मुंह गालियो।
0: ले आसे बेटो
1: मेरा तो आज तक पेट ही दुखन लाग जे।
2: बाबा बेटू है
1: बाबा से मनुड़ी के ससुरे से जरूर मिली।
0: अरे मिल ले शा
2: बावला बेटा मोटांगे कदे हंसी क्रिया करे के।
0: अरे बेरा बेटा मलडी सु तो तू ही मिलिया फिर हैं जिससे तू विषय सगा जी
2: थाने अब सगो मारो लागन लाग गयो क्या भी जोड़ो फेर और रिश्तो अबे गांव तरो छोटी जे है के।
1: बाबा मऊ को तो जाओ बाबा जाओ खेत को काम धंधा मैं आप ही देख ले सू पर बाबा तेरे मनड़ी के ससुर
0: अरे क्या भी आस है
1: मेरे ससुर से जरूर मिली।
2: अरे मिलने बिटने से ही तो रिश्तेदार अंगोठा लग गए है कौन किसा के।
0: अरे भाई जे थे दोनों माँ बेटा क्या हो तो मने ओ गांव त्रियो कान में पड़सी
2: फिर तो आज ही जाओ नी। अरे आपनी मलड़ी ने गाले तो अंता लेवता आई।
1: बाबा
0: लो कर लो बात
1: मलड़ी थारे से मिले खतर रोज कागला उड़ाती होनी बापड़ी। बापू तेरे मलड़ी के ससुर
0: बेटा एक टिक तो सरी
1: मलड़ी के ससुर से जरूर मिली।
0: लो रोट लिया पाड़ अर थे कहो तो अबे उठ जाऊं।
2: हे भगवान चलो सुनाई होई तो सरी नी तो ओ आदमी किंगी माने है।
0: लो
1: जोड़ो जोड़ो तैयार कर दे बाबा फिर
0: कर दे बेटा कर दे
1: अभी जाओ।
0: बावड़ो बेटो है
1: बाबा तेरी बलड़ी के ससुर बलड़ी के ससुर से जरूर मिली।
0: मिले शु बेटा मिले शु मिले शु राम राम सगा जी राम राम।
3: आहा क्या गो काम धाम है बिल्ली बैठा सगा जी आओ
0: जदी तो हुको कहचो।
3: आहा पड़ा मच तो बैठो बैठो
0: टावर टिकर से तगड़ा है
3: ना जी। अब किसा झगड़ा है अब के झगड़ा है उम्र में
0: सगे चू के बात करा। अरे कहवा की अर जवाब की देवे।
3: अरे थोड़ा सो तावला बोलो समझ को लगी नी
0: मारी छोरी मलड़ी तो तकड़ी है के।
3: अरे तो इतो गोतड़ो के मी फड़ो मुँह किसी बोलो हूँ बात करे।
0: अरे हूँ पूछे हो छोरी तो बापड़ी राजी खुशी है मेरी जान में सगा जी।
3: छोरी तो थेपड़ी थापण गई सुकान में अपने
0: थेपड़ी थापण के सामने नोरे में जावे है के।
3: आहा सगा जी बस पोवे खावे छोरी तारी मजा करे मजा।
0: सगा जी भैंसा तो थारी ठीक दिखे दूध चोखो देवे है।
3: हाँ अपनी तो मेसा ठीक ही दिखे सगा जी
0: लागे आजकल नाको बेलडियर ब्रूटियो।
3: अरे तापुर कूद कूद खावे गिर चूटियो बात करो थे
0: फूट जा मरा बाग। वाह सगा जी वाह आचे मारो पानी में।

0: मोटी।
1: मजे कच्ची वाली जमीन में ले जानी है रोटी तो।
0: सगा जी थारी तो बा सागनी कहानी है।
1: बाली की रोटी तो ले जानी है आपने।
0: चालो फिर चला
1: हाँ की खाओ तो गलत है।
0: खेत, चालो खेत। सगा जी बाल जी खेत में के बीजे है?
1: अपनो ठेके बीजे है सगा जी, कल पड़ी की छांटिया तो लगे।
0: लो ओ खेत आ गयो।
1: हाँ भाई सगा जी, ओ ये की तो खा गयो।
0: ए लाग रहा है नी बिजन ने।
1: हाँ देखो भाग रहे बिजन ने।
2: आ जाओ आ जाओ, इन्हें आ जाओ आ जाओ, इन्हें आ जाओ।
0: सगा जी भाल जी बुलावे। हाँ
1: कौन बाजर जावे?
0: बाजर नहीं जावे, थे तांगड़ तो टोड़ी पे पुट्ठा बांध रखे है।
1: हम बा डांगर बोर्डी नीचे के में बांध रखे है सगा जी, कमाल करो।
2: बापू थे ठीक कर दियो अब्बा इन्हें।
0: आ बा बेटा की गटमट होवे तकड़ी।
1: हाँ सगा जी, अब कर बीच ककड़ी खाए करो गे अपने।
0: भाई बातड़ी को ठाई नहीं पड़े। सगा जी थारा तो सब्जी अच्छी हो रही है।
1: भाई बहुत माड़ी बात है, कमाल करो थे, कब्जी पाछी हो रही है। भाई कोई इलाज कराओ, डॉक्टर ने दिखाओ कोई। है कमाल है। लो
2: गड़ाई घूम फिर लिया, गड़ाई घूम फिर लिया। चालो अबे मोड़ो ये बगैर घरे चालो।
0: हेलो हो गयो।
1: बेल्ला हो गया, कमाल है तो। चलो भाई फिर बेल्ला हो गया तो।
0: अब चालो घरे चालो।
1: हाँ खा लियो बली, अबे ठीक हो ला।
0: गणोई रिश्तेदार है पण पेमा भगत ही ने। अब भेरो बेटो सच्ची कहवे हो, ऐ सगी जीशु की बातरी करूंगा कि ठा लाग गया तो।
3: खेत स्यू आ गया लग गए, बर्तनारो काम तो पछे ही कर स्यू। आज तो खूब हो ही लग गए सग्या सग्या री बाता।
0: के बात हुई है सगी जी, बुझा की है और बतावे की है सगा जी।
3: सगा जी मैं भी अंगी रमज मोड़े ही जानी है, अब मैं तो अंगी बात चुटकी सागे समझ जावा।
0: तो थे आंगी बात ने क्या समझो जी?
3: मैं मारी बात ने उंदा तरीका सु कहवा जद समझे।
0: माने ही ओ तरीको बताओ दिखाने क्या समझ सके है।
3: हूं बांगे सागे बात करूं थे। देखो सगा जी ए सुनो के भैंसिया तो सही हाफरी है।
1: हाँ बे दापरी है तो भाई, बारे बाखल में बांध दो आपने तो।
3: हाँ कुत्तर नाखी, अरे भैंसिया तो सह मरली लागे है।
1: हाँ भैंसिया तो कुत्तर चरली लागे है भाई।
0: ओ तरीको ठीक है, अब मैं समझ गया। हूँ तो फिर चालू सगी जी, पण मलड़ी ने तो हूँ लेन खातर आयो।
3: सगा जी मलड़ी ने तो एक कर को नहीं घाल लीजे, घर को काम करनो है, फिर कदी आर ले जाइए तो।
0: अबे तो रिश्तेदारी को रस बनो है, अब की बार सगे शो खूब बताई कर शू है। पण चालते चालते सगी जी थारे तरीके शू राम राम तो कर लिया सगे जी सागे। अच्छा सगा जी करो थे काम धाम।
1: हाँ राम राम भाई, राम राम राम राम राम राम।
4: राजस्थानी डलकी थे सुनी अभी। जब्बर सिंह है यहाँ लिखा रहा, बीरू राम चावरिया प्रस्तुति, राजेश चड्डागी आ प्रतिभागी जी का कलाकार आ। मैं रमेश शर्मा, बीरू राम चावरिया, राजेश चड्डा, राजकुमार गोस्वामी, सरोज वर्मा और रजनी मोदी। प्रोग्राम में आखिर में थाना सुनावा सीमा मिश्रा और साथियों गायडो ओ लोकगीत।

ग्रामीण परिवार सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, DRM 909 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर। शाम के 7:30 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम लंदन में आयोजित होने वाले ICC T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले फाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अभी आप सुन रहे थे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे आईसीसी T20 महिला विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री हम आकाशवाणी के अकॉर्डन 3 चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 8:45 हुए हैं, कार्यक्रम सुने हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी

0: महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गडचिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से फंसे 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ. जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
4: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
1: पेट्रोलियम निर्यातक देश

0: के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया।

0: मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थ यात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात के 11 बजे हैं। अब समाचार होंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गईं। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के

मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, DRM 909 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर, और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात के 12:28 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।